ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में

0: हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील द फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए, आप सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम

0: अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इसी भजन के साथ कार्यक्रम वंदना, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय है अतिथि, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर उमा शंकर नागाइच।
1: भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारा देवता है। अर्थात अतिथि को देवता के तुल्य सम्मान दो। तैत्तिरीय उपनिषद में माता पिता एवं आचार्य के साथ साथ अतिथि को भी देवता के समान सम्मान देने का उपदेश दिया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एवं अतिथि देवो भव। अतिथि में तिथि शब्द आया है, आ धन तिथि, आ यानी नहीं, तिथि दिन या समय, अर्थात जिनके आने की कोई तिथि दिन या समय निश्चित या पूर्व निर्धारित न हो, वो अतिथि हुआ जो अचानक अकस्मात उपस्थित हो जावे। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इस विषय का विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है, अतिथि उसको कहते हैं जिसकी कोई निश्चित तिथि न हो। अथर्व वेद में कहा गया है, एशवा अतिथिर्यच्छोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाशनीयात्, अतिथि वेद विद ब्राह्मण के तुल्य है, इसलिए उससे पहले गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार, संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके अन्नम चैव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूर्वकम् तृणानि भूमि रुदकम् वाक चतु

एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। मनुस्मृति के अनुसार आए हुए अतिथि के लिए यथाशक्ति आसन, जल और अन्न सत्कृत करके विधि पूर्वक दें। तृणासन, विश्राम के लिए स्थान, जल और मीठा बोल, इन चार बातों की कमी तो सत्पुरुषों के घर में कभी नहीं होती। कठोपनिषद में अतिथि सत्कार के महत्व का प्रतिपादन करते हुए आचार्य यम की पत्नी उनसे कहती है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम चा इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्चा सर्वान् एतद् ब्रंगते पुरुषस्याल्प मेधसो यस्या नश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। घर आए अतिथि का समुचित आदर सत्कार न होने पर मनुष्य की आशा, अज्ञात प्राप्त वस्तु की चाहना, प्रतीक्षा, ज्ञात प्राप्य वस्तु की चाहना, संगतम सत्संगति से प्राप्त हो

और पशु आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर यमाचार्य ने अपने घर पर 3 दिन तक भूखे रहने वाले ब्राह्मण अतिथि को प्रसन्न करने के लिए नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहा। इस पर नचिकेता ने यमाचार्य से पितृदोष, स्वर्ग सुख की साधना तथा आत्मज्ञान के लिए 3 वरों की याचना की। गृहस्थ व्यक्ति से अन्न, जल एवं आवास आदि सुविधाओं का लाभ लेने वाले अतिथि का अनिवार्य कर्तव्य सुनिश्चित करते हुए कहा गया है कि यदि अतिथि गृहस्थ के घर 1 दिन या रात्रि विश्राम करे व अन्न जल का सेवन करे, तब उस सद्गृहस्थ की कल्याण कामना करते हुए उसे सत्य एवं धर्मयुक्त ज्ञान का उपदेश अवश्य करें, अन्यथा वो अतिथि पाप का भागी होगा। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान पुण्य कर्म माना गया है। अकस्मात घर पर आ जाने वाले अतिथि का सेवा सत्कार करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में अतिथि यज्ञ का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा है, अब 5वां अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, अतिथि कहते हैं। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक परंपरा

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय था अतिथि, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर उमा शंकर नागाइच। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं।

माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदर पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन है?

श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, इसमें गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह की 6:45 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कृषि सामयिकी। कृषि सामयिकी में आज का विषय है खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग, और इस विषय पर जानकारी दे रहे

आने वाला समय खरीफ फसलों का होगा और खरीफ फसलों से अच्छा उत्पादन के लिए अच्छा प्रबंधन उपाय अभी से करना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संतुलित उर्वरक उपयोग। संतुलित उर्वरक उपयोग से आशय है किसान भाइयों, जो अनुशंसित मात्रा में है, जिस फसल के लिए जितनी खुराक है वह मृदा परीक्षण के आधार पर दी जाए और एक समन्वित प्रणाली होती है उसके माध्यम से पूर्ति की जाए। यहाँ किसान भाइयों ये

गोबर की खाद हम नाडेप के माध्यम से दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। आजकल प्राकृतिक खेती का दौर चल रहा है तो घन जीवामृत के माध्यम से देते हैं। तो ये सारी फसलें के लिए जो आवश्यक होती हैं, सारे पोषक तत्व देती हैं, इसको फसल की बुवाई से पहले खेत की आखिरी जुताई के समय दी जाता है।

लेकिन अभी आवश्यकता है ऐसी खादों का, आप सही तरह से उनको बना लें और ताकि वो आने वाले समय में आपको उपयोगी हो सके। दूसरा आता है हरी खाद। हरी खाद भी एक ऐसी खाद है जो जीवांश पदार्थ की मात्रा बहुत तेज़ी से ज़मीन में बनाती है और बढ़ाती है। आने वाले समय में कभी कभी वर्षा हो जाती है, आप देखते हैं, तो हरी खाद में जो सन है, ढेंचा है या उड़द मूंग है, इसका भी बीज आप फसल में डाल सकते हैं। तो खेत में डालेंगे तो 25-30 दिन की जब ये हरी खाद की फसल हो जाती है तो खेत में इसकी पलटाई कर दें। खेत में जब पलटाई कर देते हैं तो ये 25 से लेके 80 किलोग्राम तक प्रति हेक्टर नाइट्रोजन फिक्स करती है। और ये जैसे हमारी धान की फसल लगाएंगे या जो भी फसल लगाएंगे उसमें प्रतिपूर्ति नाइट्रोजन की करने में बहुत सहायक होती है और मिट्टी की भौतिक दशा में बहुत अच्छा सुधार लाती है। तीसरी बात आती है किसान भाइयों, जब हमने ये दो उपाय कर लिए, जीवांश खाद दी, हरी खाद दी, अब आता है कि हमको जैव उर्वरक जो हमारे ऐसे हैं, जो चाहे वो बैक्टीरिया हो या हमारी जो फफूंद है, जो मित्र हैं, लाभकारी हैं, जिसमें एजिटोबैक्टर है, जो स्पोरुलियम है, ये अनाज वाली फसलों के लिए उपयोगी है, या ब्लू ग्रीन एल्गी है जो धान के लिए उपयोगी है, और साथ ही राइजोबियम है या फॉस्फोरस गुलक जीवाणु है, इसके टीके भी लगाए जाते हैं। तो ये बातें हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम बीज उपचार करते हैं, तो उस खेत में हमको जैव उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए या खेत की जुताई के

फिर बात आती है कि रासायनिक उर्वरकों को हम देना है। जब हम ये सारा समन्वित करते हैं तो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता हमारी 50% तक कम की जा सकती है, और वो 50% से हमारी फसल की उत्पादन की लागत भी कम होगी। तो हम रासायनिक उर्वरक जब देते हैं, चाहे अनाज वाली फसल हो या दाल वाली फसल, अनाज वाली फसलों में हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश देते हैं, जिसमें फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा नाइट्रोजन की 2 भागों में या 3 भागों में मात्रा दी जाती है। खासतौर से खरीफ में अब धान की जब बोनी की जाती है तो नाइट्रोजन को 2 या 3 भागों में स्प्लिट डोज में दी जाती है। लेकिन जब मूंगफली है, सोयाबीन है, उड़द है या जो ऐसी फसलें दलहन

0: किसान भाइयों, बात आती है जो हम फसल लगाने जा रहे हैं, यदि हम दलहनी परिवार की लगा रहे हैं तो हम उसके लिए दलहनी परिवार के लिए जो राइजोबियम है या जो एजिटोबैक्टर है अनाज वाली फसलों के लिए, उसको अभी से व्यवस्था करें और उसको छाया में रखें, कभी भी इसको।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि सामयिकी। इसमें विषय था खरीफ फसलों में संतुलित उर्वरक उपयोग, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मुकेश भार्गव। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। विमेंट 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम।

कार्यक्रम विवरण के तहत सुनिए इस सभा के शेष अनुप्रसारित और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियाँ। अब से कुछ ही देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे लघुवार्ता। लघुवार्ता में आज का विषय होगा सांप्रदायिक सद्भाव। 7:20 पर आप सुन सकते हैं कहानी पाठ। इस विषय का शीर्षक होगा करीमन बी की मुर्गियां और कहानीकार होंगे प्रोफेसर पुन्नी सिंह यादव। 7:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 7:45 पर आप सुन सकते हैं सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

0: 8:30 पर आप सुन सकते हैं आपकी फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 9 बजे आप सुनेंगे लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम। इसमें गायक कलाकार होंगे गोपाल कृष्ण वाषणेय, राधेश्याम तिवारी एवं साथी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन सकते हैं 9:30 पर। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंता। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य ऑकलैंड नगरे न्यूजीलैंडदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां कुर्वन्नस्ति। उभौ नेतारौ व्यापार वाणिज्य रक्षा क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सम्बन्धानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां करिष्यतः। प्रधानमन्त्री मोदी प्रमुखैः उद्योगपतिभिः क्रीडाक्षेत्रस्य विशिष्ट व्यक्तिभिश्च सह अपि संवादं करिष्यति। उभय देशयोः मध्ये सुदृढ जनसम्बन्धानां प्रतीकरूपेण असौ अद्य न्यूजीलैंड देशे विशालं प्रवासी भारतीय सम्मेलनमपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी ऑस्ट्रेलिया इण्डोनेशिया देशयोः सफल यात्रानन्तरं स्वीय त्रिराष्ट्र यात्रायाः तृतीयम् अन्तिमं च चरणम् उपेत्य ह्यः ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन विमानस्थानके प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्वागतं कृतवान्। भारतीय समुदायस्य बहवः सदस्याः अपि तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैंड देशे स्थितान् प्रवासी भारतीयान् भारतस्य समृद्ध सांस्कृतिक रिक्थस्य निरन्तरं संरक्षणाय प्रशंसितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे असौ स्वागत समारोहे प्रस्तुतानां सांस्कृतिक कार्यक्रमाणामपि प्रशंसाम अकरोत्। भारतीय नौसेना अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनम नगरे स्वीय षष्ठम प्रोजेक्ट 17A इत्यस्य अन्तर्गतं स्वदेशे निर्मितं युद्धपोतम् INS महेन्द्रगिरिः F-38 इति पूर्वी नौसेनादले समावेशयिष्यति। अस्य समारोहस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अयं समारोहः भारतस्य रक्षाक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः तथा स्वदेशी युद्धपोत निर्माणस्य दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। समावेशन समारोहस्य पूर्व संध्यायां विशाखापत्तनम नगरे आयोजिते बड़ाखाना इत्येतस्मिन् भोजक कार्यक्रमे नौ सैनिकान् संबोधयन् रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः हिंद महासागर क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रमुख संरक्षक रूपेण भारतस्य भूमिकां पुनः प्रतिपादितवान्। असौ परिवर्तमानं वैश्विक सुरक्षा परिदृश्यं दृष्ट्वा राष्ट्रस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों, संस्कारों, रीति रिवाजों का देश है। विभिन्नताओं में एकता यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। हमारे देश भारत में जगह जगह विभिन्न प्रकार

आपसी भाईचारे की भावना से रहते हैं। यही हमारी ताकत है, हमारी आज की नहीं, यही हमारी आज की नहीं बरसों पुरानी यह पहचान है, और यह ताकत हमारी आज की नहीं वरन सदा

श्रोताओं, हमें इसी भाईचारे की भावना के साथ रहना है और भारत देश को आगे बढ़ाना है। हमारे देश की ताकत एक साथ मिलकर रहने में ही है। विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न जातियों के सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर जो आपसी भाईचारे की मिसाल हम भारतवासियों ने समय समय पर दिखाई है, वह अद्भुत है। ऐसी मिसाल शायद ही विश्व के किसी

पिता में फूट डालने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि हम भाईचारे की भावना को छोड़कर आपसी मतभेद और मनभेद पैदा करें, और इस तरह से वो हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रोताओं, इस वक्त हमें अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है और किसी भी प्रकार के बहकावों में ना आने की जरूरत है। हमें पूरी समझदारी और ईमानदारी के साथ विवेकपूर्वक कार्य करना होगा। देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने देना होगा। हमें यह याद रखना है कि ये देश गांधी का देश है, गांधी जी का देश है, अहिंसा का देश है, और अहिंसा हमारा परम धर्म है। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि हम सब इन बातों पर विचार करेंगे और अपने देश को मजबूत बनाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। श्रोताओं, लघु वार्ता अब यहीं समाप्त।

0: अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता। लघु वार्ता में आज का विषय था सांप्रदायिक सद्भाव। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 MHz पर इस समय सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता, 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में करेंगे माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देर रात उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों का लिया जायजा। और भाजपा ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद ये यात्रा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
0: उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब

0: 5000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने कहा कि बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर के जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की पहचान और परामर्श कर सकेंगे। विभाग आगे जेलों में साइको सोशल काउंसिलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। इस वर्ष अब तक 1,25,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश आवंटन मिल चुका है। अभिभावक आरटीई पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे 20 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसी नगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। 65 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्ग जैसी नगर को तीनों दिशाओं से जोड़ चुका है। वहीं मसूराहाई रोड बनने से भोपाल जाने की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5.86 करोड़ आभाईडी बनाई जा चुकी है। लगभग 20,000 स्वास्थ्य संस्थान और 18,000 स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। बैठक में एबीडीएम की प्रगति और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधान सभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल देर रात दोपहिया वाहन से और पैदल चलकर उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण का भी अवलोकन किया। इससे पहले कल उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नागदा में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में फूड इंडस्ट्री पार्क बनने से किसानों को लाभ मिलेगा।
1: 1,250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता है। जोरदार अभिनंदन करें, ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।

जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4755 रुपए होगा। राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि निर्णय बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे 13 जुलाई तक प्रदेश में रिमझिम बारिश होगी। वहीं 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलिक्सटोन ने 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन के खेल तक 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। खेल मंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ कलेक्टर ने 13 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैतूल कलेक्टर ने कल उप तहसील बोरदेही में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत आम का पौधा भी रोपित किया। डिंडौरी जिले के 50 मत्स्य पालकों ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर कल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आज से 16 जुलाई तक कामाख्या शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पन्ना जिले में बरसात के मौसम में विभिन्न स्थानों पर झरना और जलप्रपात पर अत्यधिक समीप जाने, सेल्फी और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। आगरमालवा कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, जल संसाधन आदि विभागों की समीक्षा बैठक में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया। खंडवा जिले में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज से 18 जुलाई तक परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

करीमन भी अपनी मुर्गियों को लेकर काफी परेशान रहती थी। पहले तो उनकी मुर्गी के बारे में ये स्थिति थी कि मोहल्ले पड़ोस के लोग अक्सर मुर्गियां चुरा लेते थे। कोई मुर्गी चरासी देर को उनकी आंख से ओझल हुई नहीं और किसी ने उस पर अपना हाथ साफ कर नहीं लिया। मुर्गी उड़ाई और बात की बात में अपने घर के अंदर ले जाकर काट डाली। जब तक वे अपनी मुर्गियों की गिनती करती तब तक वही मुर्गी किसी चूल्हे पर धरी पतीली में खदबदाने लगती। फिर वे लाख कोशिश करें

मगर यह सिद्ध नहीं कर पाती कि उस पतीली में पक रही मुर्गी उन्हीं की है और उस मकान का मालिक मुर्गी चोर है। अगर वे किसी को फूल से भी मुर्गी चोर कह देती तो वह आदमी झगड़ा करने पर आमादा हो जाता। दूसरे लोग भी इस बात को बुरा मानते, वे चोर का ही साथ देते। कभी कभी दबी हुई जवान से कहने लगते, कमबख्त बुढ़िया हर दर्जे की खपती है, हर किसी को जलील करती रहती है। लेकिन आजकल करीमन भी इस बात से परेशान है कि पिछले 2-3 महीने से उनके दरवे से एक भी मुर्गी चोरी नहीं गई है। पहले तो उनकी समझ में यह नहीं आता था कि ऐसा हुआ क्यों, मोहल्ले के मुर्गी चोर कहां जाकर गायब हो गए। लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी समझ में आया। कुछ महीने से बाजार में जो महंगाई की चपेट पैदा हुई है उससे लोगों का जीना हराम हो गया है। लोगों की सामर्थ्य तो अब दाल रोटी खाने के बराबर भी नहीं रही है, तो फिर मांस मुर्गी कौन खा सकता है। चोरी की मुर्गी के लिए भी तो तेल चाहिए, प्याज लहसुन चाहिए, अन्य मसाला भी चाहिए। आजकल ये सारी चीजें बाजार से गायब हैं। अगर मिलती भी हैं तो सोने के भाव। इस हालत में कौन उनकी मुर्गी चुराएगा और कौन मुर्गी खाएगा। बाजार में जो आग बरस रही है उसके एक कारण उनके घर में भी मुर्गी बनाना कठिन हो गया है। उधर मुर्गियों से दड़वा भरा पड़ा है और इधर पूरा घर मुर्गी खाने के लिए तरस गया है। बाहरी महंगाई, ऐसा करिश्मा तो उसका पहले कभी नहीं देखा था। कभी सोचा भी नहीं था कि प्याज 60 रुपए किलो बिकेगी और लहसुन उससे भी दूनी कीमत पर आएगा। सरसों का तेल बाजार से नदारद हो जाएगा। करीमन बी ने कितनी बार मुर्गियां बाजार में बिकने के लिए भेजी थी लेकिन किसी ने मोल भाव तक नहीं किया। विलायत खां जैसे लेकर गए थे वैसे ही उन्हें वापस ले आए। उन्होंने रमजानी के होटल पर भी विलायत खां को भेजा था लेकिन उसने ताना मारकर विलायत खां को वापस कर दिया। कहने लगा, विलायत मियां, वे दिन हवा हुए जब तुम्हारा पसीना गुलाब था, तब तुम्हारी अम्मी और तुम किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अब मुर्गी खरीदने की बात करते हो मियां? विलायत खां वहां से भी अपना जैसा मुंह लेकर के लौट आया था। करीमन बी के दरवे में अब मुर्गियां अमा नहीं।

निहायत खां की घरवाली थोड़ा नाज नखरे वाली है। उसकी मुसीबत यह थी कि मुर्गी तो खाने को नहीं मिलती थी, उल्टी घर की साफ सफाई में उसे खटना पड़ता था। वह हमेशा बड़बड़ाती रहती थी और कुछ से कोई कहे तो लड़ने को आमादा हो जाती थी। अंत में करीमन बी ने मुर्गियों की समस्या के समाधान के लिए एक और तरीका खोजा। पहले तो मोहल्ले के शातिर लोगों की ओर उनका ध्यान गया। सोचा कि उन मुर्गी चोरों को अपने घर बुलाया जाए और उन्हें मुफ्त में मुर्गियां दी जाएं। उससे दड़वे का वजन भी हल्का होगा और उन लोगों से बिगड़े हुए संबंध भी बनेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। गली के मुर्गी चोरों को एक एक करके बुलाया और उन्हें मुर्गियां देकर खुश करने की कोशिश की, लेकिन वे खुश होने वाले कब थे। उल्टा यह कहकर चलते बने कि उन्हें उनकी मुर्गियों की दरकार नहीं है। वे एक ओर तो उन्हें मुर्गी चोर समझती हैं और दूसरी ओर मुर्गियां खैरात में देकर सवाब कमाना चाहती हैं। वे चले गए तो करीमन बी को गुस्सा आया। उन लोगों के ऊपर कम, अपने ऊपर ज्यादा। अब वो सोचने लगी कि इन चोरों को मुर्गी देने की कोई तुक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि गली के शरीफ लोगों को ऐसे ही मुर्गियां दी जाएं, खासतौर से उन घरों में मुर्गियां पठाई जाएं जिनसे उनके रसूखात अच्छे हैं। उनके घर के ठीक सामने राम सिंह का घर है। उस घर से उनके रसूखात बहुत अच्छे हैं और पुराने भी। राम सिंह के पिता के जमाने से उनके यहाँ उसके खेतों में उगी सब्जियाँ या बगीचे के पके फल अक्सर आते रहते हैं। करीमन भी कभी कभार राम सिंह के घर अपने दड़वे के मुर्गी के अंडे भेज दिया करती थी। अब उनका मन ये होता है कि उसी के घर

मुर्गियां पठाई जाएं तो ठीक रहेगा। वो पुराने वाले रसूक और भी पक्के होंगे। तभी एक रोज सुबह राम सिंह की घरवाली चंदा ने विलायत खां को दो मुर्गियां हाथ में पकड़े अपने आंगन में खड़ा पाया। देखते ही देखते वह चौंक पड़ी, कुछ समझ नहीं पाई, बल्कि मारे आश्चर्य के उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने विलायत खां से पूछा, क्यों विलायत खां, इतने सवेरे मुर्गियां लिए क्यों खड़े हो? विलायत खां थोड़ा सहम गया। वह बोला, बड़ी बी ने भेजी हैं, हमारे दड़वे की हैं, वे मुर्गियां लेकर आपको देना चाहती हैं। लो ले लो, हम भी तो तुम्हारे खेत की सब्जी और बगीचे के फल खाते हैं। चंदा ने उसको फिर गौर से देखा। अरे मियाँ, अगर सब्जी का व्यवहार तुम मुर्गी से पटाने लगे तो तुम्हारे घर का जल्दी दिवाला निकल जाएगा, समझते हो? यह कहते कहते चंदा हंसने लगी। विलायत खां फिर से सहम गया। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मगर आजकल की महंगाई ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। चंदा फिर से हंसने लगी।

0: फिर अपन दोनों के घर में रोजाना मुर्गी बना करेगी। पिलायत खां का चेहरा पिटा पिटा सा दिखने लगा। मुर्गियां उठाकर वह फिर अपने घर वापस चला आया। इसी तरह से अड़ोस पड़ोस के कुछ अन्य घरों में भी करीमन बी ने मुर्गियां पठाई और करीब करीब हर घर में पिलायत खां के साथ ऐसा ही सुलूक किया गया। अंत में उसने अपनी अम्मी से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर वे इजाजत दें तो दड़वे की सारी मुर्गियां वह बाहर सड़क पर फेंक सकता है और कुत्ते बिल्लियों को खिला सकता है, या फिर डलिया में भरकर सबको म्यूनिसिपैलिटी के कूड़ेदान में पटक सकता है, लेकिन अब वह किसी के घर मुर्गी लेकर नहीं जाएगा। लेकिन करीमन भी अपनी मुर्गियों को ऐसे कूड़ेदान में कैसे डलवा सकती हैं? वे बेहद दुखी थी। अक्सर सोचा करती थी कि अगर उनके पास अफरात पैसा होता तो वे अपने घर में मुर्गियां बनाकर पड़ोस वालों को खिलाती। सचमुच आज की महंगाई ने लोगों का खाना हराम कर रखा है। विलायत मियां कोट रोड पर एक परचूनी की दुकान पर काम करते हैं। उन्हें जो कुछ मिल जाता है उससे तो दो वक्त की दाल रोटी भी नहीं चल सकती। उधर विलायत की घरवाली अपने आप को विलायती बाबू की मैम समझती है। उसके लिए कबाब पुलाव रोजाना चाहिए। एक दिन भी अगर खाने को न मिले तो मुंह फुला लेती है। उस रोज सूरज ढल चुका था और करीमन बी के आंगन में सुरमई अंधेरा उतरता आ रहा था। वे सामने के बरामदे में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी और बगल के बरामदे में रसोई के बाहर बैठी विलायत की दुल्हन तरकारी काटते काटते बड़बड़ा रही थी, अल्लाह मियाँ ने हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है, यहाँ दोजक में लाकर पटक दिया है। महीने गुजर जाते हैं फिर भी एक वक्त गोश्त नसीब नहीं होता। कहने के लिए मुर्गियों से दड़वा भरा है और यहाँ घास खाने को मिलती है। दुल्हन की बातें सुनकर करीमन बी का मन तस्वीर में नहीं लग रहा था। वे एकाएक विलायत की घरवाली से बोली, दुल्हन क्या तुम्हें मालूम नहीं है आजकल गोश्त के अच्छे अच्छे घरों में लाले पड़े हुए हैं। अच्छे अच्छे लोगों को गोश्त नसीब नहीं हो रहा है। अब बाजार में आग लगी है तो क्या करें? वैसे हमारे घर का दड़वा मुर्गियों से भरा पड़ा है। सुनकर दुल्हन भी भड़क उठी। वह तुनक करके बोली, आग लगे ऐसे दड़बे में, आंगन झाड़ते बुहारते हमारी कमर जवाब दे गई है। वही मुर्गियां नहीं होती तो कमर को आ।
1: अभी आप सुन रहे थे कहानी पाठ, शीर्षक था करीमन बी की मुर्गियां और वार्ताकार थे प्रोफेसर पुन्नी सिंह यादव। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM बैंड 100.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म

कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म सफ़र से। इसमें आवाज़ थी मुकेश की और गीत लिखा था इंदिवर ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म कटी पतंग से। इसमें आवाज़ थी किशोर कुमार की और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर

ஒன்னை ஒன்னை ஓ ஒன்னை ஒன்னை ஓ ஒன்னை ஒன்னை ஓ.

कार्यक्रम का आखिरी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंदाज से, इसमें आवाज़ थी किशोर कुमार की और गीत लिखा था हसरत जयपुर ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 MHz पर इस समय सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिव।

सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपकी रेडियो मित्र छवि की ओर से श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्रोताओं, इस जगत में सभी पदार्थ, सभी जीव ऊर्जा से ही चल रहे हैं, लेकिन मानव एक ऐसा जीव है जिसे न केवल शारीरिक शक्ति वरन आत्मिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति की भी जरूरत होती है। बाहरी शक्ति तो हम अन्न जल से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को पाने के लिए हमें ईश्वर भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना से ही हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल बढ़ता है और जीवन रूपी इस संघर्षमय दुनिया में हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत

श्रोताओं, अब चलते हैं कुछ समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रज्ञा योजना में 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित। श्रोताओं, प्रज्ञा योजना के तहत कक्षा 8वीं से 12वीं तक की 1000 पात्र बालिकाओं को 4 वर्षों तक प्रतिवर्ष 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई शाम 5 बजे तक है। इच्छुक छात्राएं ADR भवन स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय श्योपुर में आवेदन जमा कर

श्रोताओं, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय अशासकीय निजी महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए 8 से 15 जुलाई तक प्रवेश मेला लगाने का फैसला किया है। आवेदन अतिरिक्त CLC राउंड में मिशन मोड पर

श्रोताओं, अब अगली खबर है। साइबर सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी, साइबर बुलिंग, फिशिंग अटैक, हैकिंग एवं फर्जी सूचनाओं के प्रसार जैसी घटनाओं की सूचना इस पर दी जा सकती है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1930। इस पर आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। श्रोताओं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के तहत बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के बच्चों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत कक्षा 1 से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक के विद्यार्थियों को 1,000 से 25,000 रुपये प्रतिवर्ष तक की छात्रवृत्ति DBT के माध्यम से प्रदान

बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के अस्थायी मानदेय आधारित रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। महिलाएं एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल के माध्यम से 13 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। इसकी लास्ट डेट है 13 जुलाई, आप आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय विभाग की दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र विवाहित दंपतियों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। उपसंचालक शशि किरण इक्का ने बताया कि दंपति में एक दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपए तथा दोनों दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। विवाह के 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। और श्रोताओं, अब सूचनाएं यहाँ पर समाप्त होती हैं और इन समाचारों के साथ ही आज का यह नमस्कार शुभ्री का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। तो आपकी रेडियो मित्र छवि को यानी मुझे दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
5: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
5: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
3: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
6: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
7: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज हैं, और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है। और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय

0: के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12 फीसदी से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा। सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, एनजीटी सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
7: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashvani News.
6: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
8: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं.
6: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Mr. Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Welcoming Prime Minister Modi, Mr. Luxon said, "It was a pleasure and an honour to host him," adding that the visit reflects the growing strength of bilateral ties.
9: This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity, and I'm therefore delighted to welcome you here. Thank you for the relationship and thank you for what you've put into it personally. I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. Very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here.
6: Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
3: Highlighting the growing economic partnership between the two countries, Prime Minister Narendra Modi said the free trade agreement was concluded in a record 9 months and expressed confidence that the bilateral trade would double by 2030. He welcomed New Zealand's target of investing $20 billion in India over the next 15 years, describing India as not only a market but a launchpad for global growth. The Prime Minister invited New Zealand businesses to invest in manufacturing, technology, agritech and innovation. He also proposed greater exchange of young business leaders under the age of 35 to strengthen future economic cooperation between the two countries. Manju Meena for Akashwani News, Auckland, New Zealand.
6: In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Prime Minister Modi arrived in Auckland yesterday on the third and final leg of his three-nation tour after concluding his successful visits to Australia and Indonesia. The Indian Navy is all set to commission its sixth project, 17A Indigenous Stealth Frigate Mahendragiri F-38, into its Eastern Fleet at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by Defence Minister Rajnath Singh. It will mark another significant milestone in India's journey towards defence self-reliance and indigenous warship construction. Addressing the naval personnel in Vishakhapatnam during Barakana on the eve of the commissioning ceremony, the Defence Minister reaffirmed India's stand as the primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. We have more from our correspondent.
10: Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Mezagon Dock Shipbuilders Limited in Mumbai, Mahendragiri is a state-of-the-art stealth frigate equipped with advanced weapons, sensors and electronic warfare systems. The warship is capable of undertaking anti-air, anti-surface and anti-submarine operations. It can also carry out maritime security protocols, search and rescue missions, humanitarian assistance and disaster relief operations and sustained deployments in the Indian Ocean region. With over 75% indigenous content, the frigate reflects the government's push for self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. The government says its induction will further enhance the Indian Navy's operational capability and reinforce India's position as a leading indigenous warship building nation. Allu Murli, Akashwani News, Vishakhapatnam.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on EIR app. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, along with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal. The Home Minister said only licensed private security agencies should be entrusted with port security and only personnel trained by the Central Industrial Security Force or CISF should be deployed. He directed that training at the Port Security Training Institute should begin at the earliest by utilizing the existing infrastructure. A report.
0: The Bureau of Port Security is being established as a statutory body under Section 13 of the Merchant Shipping Act 2025. To be headed by a Director General, the Bureau will function under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It will be responsible for regulating and inspecting the security of ships and port facilities. The Bureau will also ensure the timely collection, analysis and sharing of security-related information.

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अभी आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना। फिल्म आरजू से। इसमें आवाज थी मोहम्मद रफी की। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, छावेंद्र कुमार वर्मा। और ये पत्र हमें आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं अगला फरमाइश।

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। इसमें आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा था गुलजार ने और संगीत दिया था खयाम ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी, जिनके नाम हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। और ये पत्र हमें आया है छत्रपति संभाजी नगर से। इसी गीत की फरमाइश हमारे एक और श्रोताओं ने की है, जिनके नाम हैं राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी। और ये पत्र हमें आया है लक्ष्मी बाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से। तो लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर एक और फरमाइशी गीत

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म त्रिशूल से। इसमें आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा था साहिर ने और संगीत दिया था खयाम ने। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता थे डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। और ये पत्र हमें आया है महा

कार्यक्रम का ये फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म दादा से। इसमें आवाज़ थी यशुदास की और गीत लिखा था कुलवंत जानी ने, संगीत दिया था उषा खन्ना ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की थी जिनके नाम हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और ये पत्र हमें आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। इसी गीत की फरमाइश हमारे एक और श्रोताओं ने की है जिनके नाम हैं हरदेव मीका, बलबिंदर मीका, बलबिंदर बीरक, जयतेग बीरक, मीका बीरक, और ये पत्र में आया है गांधी चौक रोपड़

कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म अपनापन से। इसमें आवाज़ें थीं लता मंगेशकर की और मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, FM बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है लोक रंग का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल कृष्ण वार्ष्णेय और राधेश्याम तिवारी एवं साथियों की आवाज़ में

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कसे क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण वाशने की आवाज़ में ये लोकगीत। इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग का ये कार्यक्रम, लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म इजाजत से। इसमें आवाज़ थी आशा भोसले की और गीत लिखा था गुलजार ने, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है जिनके नाम हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। और ये पत्र में आया है महादेव घाट अमलेश्वर से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं अगला फरमाइश।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शान से। इसमें आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं नारायण भाव खड़से, रक्षा ताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश और कार्तिक खड़से, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी। और ये पत्र में आया है चांडूर बिस्वा, तालुका नांदुरा, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से। इसी गीत की फरमाइश हमारे एक और श्रोताओं ने की है, जिनके नाम हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर। और ये पत्र हमें आया है महादेव घाट अमलेश्वर।

हसीना बड़ी खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बैराग से। इसमें आवाज़ें थीं आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी की, और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। इसकी थी फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है, जिनके नाम हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा। और ये पत्र हमें आया है छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का

0: कार्यक्रम का आखिरी फरमाइशी गीत अभी आप सुन रहे थे, फिल्म। फिल्म द ट्रेन से, इसमें आवाज़ें थी लता मंगेशकर की और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है जिनके नाम हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। और ये पत्र हमें आया है नेपाल पैलेस सागर से। इसी गीत की फरमाइश हमारे एक और श्रोताओं ने की है जिनके नाम हैं सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर, रमेश मिगलानी। और ये पत्र हमें आया है मलोट कैंप पंजाब से।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी, आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। धार जिले में इन दिनों खेतों में खूब रौनक दिखाई दे रही है। किसान खरीफ की फसलों की बोनी में पूरी तरह जुटे हैं। इस साल जिले में 5,15,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा रकबे में सोयाबीन, कपास और मक्का बोया जा रहा है। अब तक करीब 90% काम पूरा हो चुका है। हालांकि निमाड़ के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण किसानों की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। खेतों की हलचल के बीच गांव में रोजगार की नई उम्मीद भी जागी है। तिरला में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में लोगों को 125 दिन की रोजगार गारंटी और डिजिटल भुगतान जैसी नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर ठगी से बचने के आसान उपाय भी बताए गए। दूसरी ओर किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए कोशिश भी तेज हुई है। मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव धार पहुंचे और सहकारी बैंक के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और नए सदस्यों को अंश प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर बैंक परिसर में पौधरोपण भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर जिले में प्रबुद्धजन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और समाज सेवा से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। वक्ताओं ने विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका पर जोर दिया। अब चलते हैं पीथमपुर, जहां उद्योगों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीथमपुर में ल्यूकोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 272 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीथमपुर प्रदेश के औद्योगिक विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पीथमपुर की एक और बड़ी तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ बन रहे पीएम मित्रा पार्क का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है। अनुमान है कि इससे 46,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अधिकारियों ने विकास कार्यों का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब बात सेहत की। धार जिले में पल्स पोलियो अभियान पूरे उत्साह के साथ चलाया गया। 5 साल तक के 3,40,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई गई। इसके लिए जिले भर में 2,500 से ज्यादा बूथ बनाए गए थे। हजारों स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर पहुंचकर अभियान को सफल बनाया। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर आई। धार में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बड़ी कंपनियों ने युवाओं के इंटरव्यू लिए। 48 युवाओं को मौके पर ही नौकरी के ऑफर लेटर दिए गए। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत जिले के 471 हितग्राहियों के खातों में 10 करोड़ 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई। ये सहायता सीधे बैंक खातों में पहुंचाई गई। सामान्य मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता से जुड़े मामलों में लोगों को ये मदद मिली है। प्रशासन का कहना है कि पात्र परिवारों को समय पर सहायता मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। धार जिले में पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया गया है। प्रदेश भर के साथ धार जिले में भी 13 जुलाई से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यह अभियान दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य से चलाया जा रहा है। 3-4 पशु रखने वाले पशुपालकों से विभागीय टीमें संपर्क करेंगी और पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और पोषण की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ना है। विद्यालयों के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई तक किया जा सकता है। जिला स्तरीय क्विज का आयोजन 7 अगस्त को होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पिछले वर्ष इस क्विज में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल बचाने की मुहिम भी रंग ला रही है। वन विभाग ने 7 वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए करीब 590 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसी बीच जमीन पर सागौन के पौधे लगाए जाएंगे। और आखिर में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर, अब धार जिले में बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू कर दिया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए, आप प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे गुलाम अली की गाई

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई ये गज़लें। इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र FM 100.2 MHz पर इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म ताल से। इसमें आवाजें थी अनुराधा पौडवाल की, श्रीराम और सुजाता की और सोनू निगम की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था ए आर रहमान ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म तुम बिन से। इसमें आवाज़ें थीं सोनू निगम की और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा था फैज़ अनवर ने और संगीत दिया था निखिल विनय ने। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म दागदी फायर से। इसमें आवाज़ें थे उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म कोई मिल गया से। इसमें आवाज़ थी ताज और साथियों की, गीत लिखा था इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा।

बॉडीगार्ड फिल्म से लिया है, जिसे गाया राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने, शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा, संगीत हिमेश रेशमिया का।

अगला गीत हर्षदीप कौर ने गाया है, इनका साथ दिया अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और जैम का संगीत फिल्म है रईस।

दम लगा के हईशा, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है पद्मावत फिल्म से, जिसे आवाजें दी श्रेया घोषाल और स्वरूप खान ने। ए एम तुराज का गीत है, संगीत संजय लीला भंसाली का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में हम आपको सुनवा रहे हैं। शब्द रचना समीर की है, संगीत तैयार किया नदीम श्रवण ने, फिल्म का नाम धड़कन।

कार्यक्रम का अगला गीत तुम बिन फिल्म से है। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा। आवाजें सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल।

आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लाहार का दौरा करेंगे। वे यहां आयोजित एक कार्यक्रम से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला। राज्य सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला लिया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। और प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कटी पतंग फिल्म का गीत, जिसे गाया किशोर कुमार ने। संगीत आर डी बर्मन का है और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। सुना चाहा छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इसी गीत की फरमाइश भेजी सरो चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजताबा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

अगला गीत इन सभी श्रोताओं की पसंद का है। छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी, बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद डोडवानी, श्रेया पूनम वाधवानी और समस्त माखीजा परिवार ने। इन श्रोताओं की पसंद है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया धरती फिल्म का गीत, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत दिया, फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी। सुनना चाहा है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से ये पत्र आया, मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित और समस्त राजावत परिवार ने।

कार्यक्रम का अगला गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। सपना संगीता रोड इंदौर से पत्राया लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया का। इन श्रोताओं की पसंद है लता मंगेशकर का गाया आन मिलो सजना फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं हीर रांझा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया मदन मोहन ने। सुनना चाहे कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य शिवानी और मीनू राज श्रीमाली ने। घंटाघर चौक खंडवा से ये पत्र हम तक पहुंचाया संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब
2: ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: अदम्य शक्ति,

तुम शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: Sena.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अब सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की 10वीं कड़ी।

दोस्तों नमस्कार, आप सभी को

गजलें सुने, लोक संगीत सुने, बड़े शौकीन संगीत के। उनको एक दिन कुछ ऐसा लगा कि एक नौकर रख लिया जाए घर में जो मेरी मदद करे, घर के दूसरे काम काज भी करे। ठीक है साहब, पेपर में एक विज्ञापन निकलवा दिया गया कि एक कर्मचारी की आवश्यकता है, मिलिए। उन्होंने थानेदार साहब ने अपना पता उस पेपर में दे दिया। अब एक गोपाल नाम का व्यक्ति उस अखबार को, उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के, विज्ञापन को पढ़ के उनके घर पहुंचा। जब घर तो पहुंचा, वार्तालाप शुरू हो गई। कहले कहिए। कहले थानेदार साहब नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है और आपका विज्ञापन पढ़ के मैं आपकी सेवा में आ गया हूं। कहले ठीक है, आप हमारे यहाँ काम करने आए हैं, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम थानेदार रहे हैं पहले, और उधम हमारे घर में उधम नहीं करिएगा, और चोरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पुराना थानेदार हूँ। तो गोपाल बोलता है साहब हमने आज तक चोरी नहीं की, हमने तो झूठ भी नहीं बोला, चोरी भी नहीं की, आप चिंताओं से मुक्त रहें, आप हमको अपने घर में बस सर्विस में, सेवा में ले लें बस। तो थानेदार साहब बोलते ठीक है आप आओ नौकरी में, कल से आ जाओ आप, लेकिन बात यह है कि हम हैं संगीत के शौकीन, वो बहुत ज्यादा संगीत के शौकीन है, बस हमको 24 घंटे एक ही नशा रहता है संगीत का। आकाशवाणी हम दिन भर सुनते हैं और जब जब समय मिलता है हम दूरदर्शन देखते हैं, उसमें भी गाने बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे भजन आते हैं। है? कहले ठीक है साहब, जो आप देखते वो हम भी देखेंगे। नहीं नहीं, तुमको तो काम करना होगा, देखने का समय सिर्फ हमारे पास है, है? चलो ठीक है, तो शर्त यह रहेगी हमारे आपके बीच में मिस्टर गोपाल के, जैसे कोई आ रहा है हमारे घर में तो तुमसे हम बोलेंगे भाई कौन आया, जरा दरवाजे पे जाओ, तो तुम उसको देखना और हमको गाना गा के बताना कि वो कौन आया है। यानी समझा नहीं थानेदार साहब? ओहो, क्या उसमें समझाना, कोई आ रहा है हमको गाना गा के बताओ कि वो कौन आया है। अगर हमने कोई चीज तुमसे घर में बुलवाई है, ये ले आओ वो ले आओ, तो तुम सब गाना गा के गाना गाते गाते आओ, फिर हमको दो। समझ गए? तो गोपाल थोड़ा सा समझ गया, थोड़ा नहीं समझा, उसने हल्का सा झूठ बोल दिया, कहा अरे बिल्कुल साहब, अरे वाह वाह थानेदार साहब, बड़ा छोटा सा आपने छोटी सी बात कही है, गाना गा के बात करने की है ना, कोई आ रहा है गाना गा के बताओ, कोई जा रहा है गाना गा के बताओ, आप चिंताओं से मुक्त रहे थानेदार साहब। अरे हम तो संगीत जानते हैं, हमने 5 साल 7 साल शास्त्रीय संगीत सीखा है। अरे फिर तो गोपाल बहुत अच्छी बात है, कल से तुम्हारी सर्विस पक्की, 1-15 दिन महीने भर काम करो, उसके बाद तुम्हारी तनख्वाह के बारे में विचार किया जाएगा। ठीक है साहब। इस तरह से एक दिन तो निकल गया, दूसरे दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया तो थानेदार साहब ने गोपाल को बोला, अरे गोपाल, अरे जरा देखना भाई दरवाजे पे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जरा देखो भाई कौन आया है। जी थानेदार साहब, जा रहा हूं आ रहा हूं। उसने दरवाजा खोला, जो सज्जन थे उनको देखा, अब बता रहा है वो थानेदार को कौन, गोपाल की कौन आया है, किस तरह से गाना गा के।

0: थानेदार बोलते हैं, उसको बोलो
1: गोपाल कि वो बाद में आएगा, अभी कुछ मूड नहीं है पैसे वैसे का देने का। हम उसका पैसा दे देंगे, रुपया चार रुपया पांच रुपया कोई बात नहीं है। अभी उससे बोलो अभी जाए, अभी हम पेपर पढ़ रहे हैं, चाय कॉफी लेना, नाश्ता लेना। ठीक साहब, गाना गा के एक दिन तो निकल गया, दो दिन निकल गया, चार दिन निकल गया। अचानक माहौल होली का आया, होली के माहौल में थानेदार साहब कुछ उल्टा सीधा कुछ खा पी के कहीं से आ गए थे,

खाने पीने के चक्कर में वो रात को आके घर में सो गए और न जाने कहां से कोई अंगार चिंगारी कोई कहीं से भड़की, कुछ क्या इत्तफाक हुआ, थानेदार साहब के मकान में लग गई आग। तो सबसे पहले जो धुआं था वो गोपाल की नाक में पहुंचा, उसके कमरे में पहुंचा, वो घबरा गया, समझ गया कि ये चारों तरफ लगता है आग लग गई है। और वो दौड़ता भागता थानेदार साहब के दरवाजे पे यानी उनके कमरे के दरवाजे पे पहुंचता है और आवाज लगाता है, लेकिन घबरा भी यही जाता है कि कहीं अगर मैंने गाना गा के नहीं बताया तो मेरी नौकरी ना छूट जाए। तो पहले तो खैर सादे तरीके से चिल्ला रहा है, किस तरह से, अरे थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, थानेदार साहब दरवाजा खोलिए, अरे आपके घर में आग लग गई है थानेदार साहब। तो थानेदार साहब ने जैसे ही दरवाजा खोला, गोपाल सामने, थानेदार सामने, गोपाल घबरा गया। थानेदार ने बोला, अरे क्या बात है गोपाल, हम तो सो रहे थे भाई, मेरे को ओफो काय को जगा दिया गोपाल। तो गोपाल अपनी सर्विस के चक्कर में गाना गा के बता रहा है आग लगने का किस तरह से।

छोटे छोटे कलाकार, एक सपना हमारे दिल दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि हम बड़े बड़े शहरों में जाएं, शहर में जाएं, शहर से बाहर जाएं, देश में जाएं, देश से बाहर जाएं, हमारे कार्यक्रम हो, लोग हमको सुने, रेडियो स्टेशन वाले हमें बुलाएं, हैं, टेलीविजन वाले हमें बुलाएं। ये तो खैर ठीक ठीक है, फिल्मी दुनिया में हमारे गाने हों, फिल्मों से के माध्यम से अब कोई हीरो एक्टिंग कर रहा है हीरोइन के साथ, उसके बैकग्राउंड में, उसके प्लेबैक में हमारी आवाज हो, ऐसे सपने तो खैर सभी लोग देखते हैं, खास करके मैंने जरूर देखे, एक बार नहीं सैकड़ों बार। और उस सपने को पूरा करने के लिए पहुंच गया फिल्मी दुनिया में बॉम्बे। बॉम्बे जाने के बाद यानी मुंबई जाने के बाद मैंने कुछ पता लगाया कि भाई यहां किसको आवश्यकता है नए गायक कलाकार की। चलिए जरा मालूम तो हो गया, एक डायरेक्टर साहब के घर पहुंचा, निवेदन प्रार्थना की कि साहब 10-5 मिनट का वक्त दे दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा गायक कलाकार हूं, अपने इलाके का बहुत बढ़िया गायक हूं, सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं, जब भी मैंने अपने महल्ले में अपने इलाके में गाना गाया है, किसी ने फूल माला पहनाई है, किसी ने चाय पिलाई है, किसी ने कॉफी पिलाई है, किसी ने आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे मेरे प्रोग्राम छोटे छोटे होते रहते हैं। डायरेक्टर ने बोला भाई ऐसा है, मैं फिल्मी शूटिंग में जा रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, अब आप यहां कहां आ गए, आप बाद में आइए तो 2-3-4 महीने के बाद। तो मैंने उससे बार बार ऐसा मत करिए साहब, 3-4 महीने के बाद तो मेरे सपने अगर पूरे नहीं हुए तो मेरा तो प्राणांत हो जाएगा, बस 5-10 मिनट दे दीजिए। ठीक है, अब तुम बोलते हो तो 5-10 मिनट दे देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी गाना भाई, मुझे कहीं और जाना है। ठीक है सर, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हारमोनियम तबले वाले मिलेंगे? हाँ, बुला देता हूं, सब यहीं बैठे हुए। चलो भाई ढोलक नवाज, भाई तबला नवाज, भाई ऑर्गन वाले, भाई हारमोनियम वाले, भाई सब कलाकार बंधु आ जाओ सर, इसकी मदद कर दो, ये कोई बच्चा आया है नया गाने वाला, तो हाँ चलो शुरू करो। तो सर पुराना गाना सुनाओ। अरे कोई भी गाना सुनाओ यार, पुराना गाना सर, अफसाना वाला।

रहा भाई, ये अफसाना में माँ माँ सब क्या है भाई साहब, ये कितना अच्छा गाना, अपने जमाने का गाना, इसमें दूसरा गाना तुमने कहाँ से जोड़ दिया है? अगर आपकी तैयारी नहीं तो आपको नहीं आना था। नहीं सर, माफी चाहते सर, क्या है कि मैं 250-300 गाने याद करके आया था सर, अपने जिस गांव में मैं रहता हूँ ना सर, वहां से 250 गाने याद करके आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डायरी में खो गई सर, रेलवे ट्रेन में सर, वो बस में खो गई सर, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम दूसरा गाना को कोई गाओ जो तुमको पूरा आता हो। गाएंगे ना सर, बहुत अच्छा वाला गाना गाएंगे सर, वो चोर चोर वाला गाना गाएंगे। कौन सा चोर चोर वाला? अभी सुनाते सर, वो चोर चोर का शोर मचाकर। हाँ अच्छा सुना, पूरा गाना? नहीं पूरा गाएंगे सर, पूरा गाएंगे। हाँ

बंद करो बंद करो, ये सब क्या हो रहा भाई है? हमने तुमको जब बोला तरीके से जो गाना पूरा आता हो वो गाओ भाई साहब, मेरा क्यों समय खराब कर रहे हो? मुझे फिल्म की शूटिंग में जाना, हीरो ने हीरोइन ने बहुत मुश्किल से डेट दी है, मेरा क्यों नुकसान करते हैं भाई साहब, मुझे क्यों परेशान करते? तो वो मेरे रोने की जगह वो रोने लगा। कौन रो रहा था? डायरेक्टर। मैंने फौरन बोला, नहीं साहब आप चिंता मत करिए, मैं बहुत अच्छा गाना गा रहा हूँ, पुराना वाला गाना गा रहा हूँ साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। अच्छा ठीक है गाओ, लेकिन पूरा आता है ना? बिल्कुल साहब पूरा आता है, मैं आपकी कसम, अरे मेरी कसम मत खाओ भाई साहब, मेरी कसम नहीं सर। अच्छा तो फिर मैं अपनी कसम खा लेता हूँ सर, मेरे को पूरा आता है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। तो ये फिल्मी गाना है तो सर, लेकिन भजन है सर, वो भजन का मैं बचपन से बहुत शौकीन रहा हूँ, ये गाना पूरा भजन आपको सुनाऊंगा, देखिए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माता। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पहले भजन सुनाना था, नहीं सर अब सुना, पूरा भजन। हाँ गाइए, हाँ सुनाओ सुनाओ, हाँ

गाना गा रहा है भैया, कैसा गाना गा रहा है यार, ये ना भजन है ना फिल्मी गाना है, ना कव्वाली गाई आपने ना गजल गाई, ये ना लोकगीत, था क्या भाई साहब, ये था क्या? नहीं सर गलती हो गई तो मैं माफी चाहता हूँ सर। वो क्या है 250 गाने याद करके, वो कह मेरे को मालूम है 250 गाने याद करके आए थे और आपकी डायरी खो गई है, बम्बई में खो गई थी ना। हाँ सर आपको कैसे मालूम, अभी आप ही ने बताया था ना मेरे को है। हाँ अच्छा अब एक काम करो मेरे पिताजी, आखिरी में एक बहुत बढ़िया सा गाना गा दो भैया, चाहे पाकिस्तान का गाना हो, चाहे हिंदुस्तान का गाना हो, चाहे इंग्लैंड का गाना हो, चाहे अमेरिका का गाना हो, जहां का गाना हो भाई साहब, भारत का गाना हो, आपके गांव का गाना हो, आपके शहर का गाना हो, लोकगीत हो, कुछ भी हो, लेकिन पूरा सुना दो, मुझको जाना है।

0: करने के लिए संजय हाजिर हो।
1: कितना बदल रहा है साहब जमाना, कितना बदल गया है। जो कल तक होता था वो आज नहीं हो रहा है, जो आज हो रहा है वो कल नहीं होगा। पहले के जमाने में लोग अपने अपने घर के बाहर लिख के रखा करते थे, आइए आपका स्वागत है। आजकल बहुत सारे लोग अपने घर के बाहर लिख के रखा करते हैं, कुत्तों से सावधान। पहले के जमाने में होता साहब ये था कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं और दादाजी आते थे, अदब के लिए खांसते थे तो बहुएं अपने अपने कमरों में चली जाया करती थी। आज जमाना इतना बदल गया साहब कि बहुएं आंगन में खड़ी हुई हैं, दादाजी आए और धोखे से बहू खांस दे, पता चला दादा बाहर। कितना समय बदल गया है, कितनी सारी बातें बदल गई हैं। अब मैं साहब संगीत के ऊपर आ रहा हूँ कि पहले के जमाने में हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुलाता था तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी, हीरो हीरोइन को गाने के माध्यम से बुला रहा है।

इतना कहता था साहब हीरो पहले, तो हीरोइन पूरे काम छोड़कर भागी चली आती थी। आज भी हीरो हीरोइन को बुलाता है, देखिए साहब आज के जमाने की लिरिक्स क्या लिखी जा रही है। आज के हीरो ने जैसे ही हीरोइन को देखा तुरंत अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाया, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पाप पाप, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम, बताइए चाय भले ही भर जाए। क्या जमाना था साहब, कि पहले के जमाने में हीरोइन चली जा रही है, हीरो तारीफ कर रहा है, तारीफ करने का अंदाज देखिए।

आज भी हीरोइन जा रही है, आज का हीरो तारीफ कर रहा है हीरोइन की, चलने की तारीफ सुनिएगा। क्या अदा क्या जल बे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों, जान भी अब जाएगी आंख ना मारो, भैया अरे खा ले लैया, भैया गुड़ की लैया। ये जमाना बदल गया साहब, पहले के जमाने में क्या बात हुआ करती थी कि शरीर से आंखों को ध्यान में रखते हुए क्या शानदार लिरिक्स लिखी गई।

आज का हीरो आंखों के लिए क्या बोलता है, अखियों से गोली मारे बच गया, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की। अब बताइए साहब, अगर आंखों से गोलियां चलने लगे तो परमाणु परीक्षण करने की क्या आवश्यकता है? है, इतना समय बदल गया है। अभी क्या बात हुआ करती थी, पहले भी हीरोइन अपने हीरो से प्यार करती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से किस तरीके से व्यक्त करती थी,

0: राज की हीरोइन क्या बोलती है, दैया दैया दैया रे, दैया दैया दैया रे, तू तो मेरा आशिक मैंने प्यार किया रे दैया मैया।
1: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुनी धारावाहिक हंसना मना है की 10वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इंदौर में आज माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लाहर का दौरा करेंगे। वह यहां आयोजित एक कार्यक्रम से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉक्टर नरोत्तम के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरू किया है। यह प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर की जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है। इसमें भील जनजातीय चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी। और प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए मेहनत जरूरी है। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, वर्तमान समय विज्ञान और तकनीक का युग है। आज मानव का जीवन लगभग आधुनिक तकनीकों से प्रभावित हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, उद्योग, संचार, परिवहन तथा सरकारी सेवाओं में डिजिटल तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का तेजी से उपयोग पड़ रहा है। AI ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से कंप्यूटर और मशीनें मनुष्य की तरह सोचने, सीखने, विश्लेषण करने तथा निर्णय लेने के कार्य कर सकती हैं। भारत सरकार भी इस आधुनिक तकनीक को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। इसी दिशा में यशोदा AI एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक बनाना है तथा उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त करना है। बहनों, यशोदा AI एक राष्ट्रीय पहल है जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW तथा फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को AI की जानकारी देना, डिजिटल कौशल विकसित करना तथा उन्हें नई तकनीकों का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करना सिखाना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को डिजिटल की दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। आज लगभग हर क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और व्यवसाय सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यदि महिलाओं को इन तकनीकों की जानकारी नहीं होगी तो वे विकास के मुख्य धारा से पीछे रह जाएंगी। इसलिए यशोदा AI महिलाओं को तकनीक रूप से सक्षम बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अनेक महिलाएं आज भी डिजिटल संस्थानों का सही उपयोग नहीं कर पाती और साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा गलत जानकारी का शिकार हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में यशोदा AI महिलाओं को तकनीक शिक्षा प्रदान कर उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। बहनों, यशोदा AI के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हैं, जैसे कि महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूलभूत जानकारी देना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। बहनों, यशोदा AI की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम, सरल भाषा में AI और डिजिटल तकनीकों की जानकारी, साइबर सुरक्षा पर विशेष प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने का प्रयास, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन। बहनों, यशोदा AI केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। जब महिलाएं तकनीक रूप से सक्षम होंगी तभी भारत वास्तविक अर्थों में डिजिटल और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इसलिए प्रत्येक महिला और छात्रा को यशोदा AI जैसे पहलों से जुड़कर नई तकनीकों को सीखना चाहिए। बहनों, जीवन हमें हर दिन कुछ नया सीखने, आगे बढ़ने और मुस्कुराकर हर चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। इसी सुंदर भावना को व्यक्त करता है फिल्म डियर जिंदगी का बेहद लोकप्रिय और प्रेरणादायक गीत लव यू जिंदगी, जिसे गाया है जैस्लीन रॉयल ने।

0: ने सुना गीत लव यू जिंदगी, जिसे फिल्म डियर जिंदगी से लिया गया था और इस गाने को जैस्लीन रॉयल ने गाया था। बहनों, आज हमारे साथ हैं साहिल दुबे, जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के हैं और एआई रोबोटिक्स में इंजीनियर हैं। तो साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: मैम, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: साहिल जी, आपके अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन लाए?
1: मैम, एआई ने मैम महिलाओं के जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और अवसरों से भरपूर बनाया है। इससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यवसाय के नए रास्ते भी खुले हैं। अब मैम महिलाएं घर बैठे भी सीख सकती हैं, काम कर सकती हैं और वो अपना व्यवसाय बढ़ा भी सकती।
2: अच्छा सर, ये मतलब रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में एआई ने महिलाओं के लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध हो रही है?
1: इसमें मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि एआई महिलाओं को मैम नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। जैसे कि इसमें वे ऑनलाइन व्यवसाय हो गया या कंटेंट का निर्माण करना, डिजिटल सेवाएं हो गई, फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स जैसे अन्य क्षेत्रों में हम कार्य कर रही हैं। एआई उनके काम को तेज, सरल और अधिक प्रभावित बनाती है। काम करना वो आसानी से कर सकती हैं, स्मार्ट होम के उपकरण का प्रयोग करना, समय प्रबंधन और बच्चों की पढ़ाई जैसी गतिविधियों पे आसानी से वो नजर रख पा रही हैं। उदाहरण के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वॉइस असिस्टेंट और स्मार्टफोन एप्स कई मैम ऐसे दैनिक कार्य हैं जिनको सरल बना देते हैं वो।
2: अच्छा, ये स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में एआई महिलाओं को किस प्रकार सहायता कर रही है?
1: स्वास्थ्य संबंधित मैम जैसे जानकारी, समय पर जांच और डॉक्टर से ऑनलाइन परामर्श लेना हो जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। बाकी सुरक्षा के लिए कई सारे मोबाइल ऐप आ गए हैं जो कि आपके आपातकालीन स्थिति में परिवार या पुलिस को तुरंत सूचना भेजने में मदद करते हैं। आजकल सभी स्मार्टफोन में पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से ये रहता है कि हम इमरजेंसी ऐसा कुछ बनाएं कि जिसमें तुरंत एक या दो सिर्फ क्लिक से आप तुरंत आप अपने घर पे स्वास्थ्य संबंधित किसी भी चीज का आप वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं।
2: अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि एआई के बढ़ते उपयोग से महिलाओं के रोजगार पर कोई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है?
1: जी हाँ मैम, एआई के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। जहाँ नई तकनीक से नए रोजगार पैदा होंगे, वहीं कुछ पारंपरिक कार्य कम हो सकते हैं। इसलिए महिलाओं को नई तकनीकों और डिजिटल कौशल को सीखते रहना चाहिए हर दिन, ताकि वो बदलते समय के साथ आगे बढ़ सकें और सतर्क रहें हमेशा।
2: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक एआई की सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
1: ग्रामीण क्षेत्रों के

0: लिए मैम, जैसे कि डिजिटल शिक्षा हो गई, इंटरनेट की सुविधा, जो उनके ग्रामीण की स्थानीय भाषा है उसके बारे में प्रशिक्षण लेना, तकनीकी जागरूकता अभियान हो जैसे हो सकता है, और सरकारी सहायता को बढ़ावा देना चाहिए इन सब चीजों को। इससे क्या होता है, महिलाएं अधिक से अधिक AI का लाभ उठा सकेंगी।
1: अच्छा सर, जैसे कि AI का उपयोग करते समय महिलाओं को किन चुनौतियां या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
0: सबसे पहले तो महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। उन्हें अपनी जानकारी किसी से भी साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी जानकारी की सत्यता की जांच पूरी करनी चाहिए मैम, और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क हमेशा रहना चाहिए। किसी के भी बहकावे में या किसी भी ऐसे पोस्टर या बैनर को जो आप बताते हैं कि इससे आपको लाभ होगा, इससे आपको ये लाभ होगा, इन सब पे वो ना जाएं, किसी भी शॉर्टकट का वो इस्तेमाल ना करें। AI का उपयोग मैम सोच समझ कर और एक जिम्मेदारी के साथ करना बहुत ही आवश्यक है।
1: सर, महिलाओं को AI से जुड़ी नई तकनीकों और कौशलों को सीखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए?
0: मैम इसमें यही कहेंगे कि महिलाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दोनों कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा व्यस्त दिनचर्या है उनकी तो वो ऑनलाइन अपना सीख सकती हैं, बाकी अगर हो सके तो वो ऑफलाइन भी जा सकती हैं। डिजिटल कौशल विकसित करना चाहिए उनको हर दिन, नई तकनीकों के बारे में नियमित रूप से सीखना चाहिए हर समय, और व्यवहारिक अभ्यास भी करते रहना चाहिए साथ साथ में। इससे क्या होता है, उनके खुद का भी विकास होता है।
1: सर, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में AI और महिलाओं की भूमिका को आप किस प्रकार से देख रहे हैं?
0: मैम विकसित भारत 2047 के निर्माण में AI और महिलाओं की भूमिका मैम अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यदि मैम महिलाएं AI का प्रभावी और जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग करेंगी तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि विज्ञान और भी जैसे अन्य क्षेत्रों में वो अपना योगदान देंगी, जरूर देंगी। इससे क्या होगा मैम, देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक और तकनीकी प्रगति को मैम एक नई गति मिलेगी, तथा भारत एक मैम सशक्त और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में और आगे बढ़ेगा।
1: बहुत अच्छा सर, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, और हमारी श्रोताएं जो सुन रही हैं हमारे कार्यक्रम को, उनको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, भारत आज विकास के एक नए युग की ओर अग्रसर है। देश वर्ष 1947 तक अर्थात स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि ऐसा भारत है जो सामाजिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं समाज की आधी आबादी होती हैं और उनके बिना किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए विकसित भारत 2047 का निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बहनों, महिलाएं परिवार और समाज की आधारशिला होती हैं। एक शिक्षित और सशक्त महिला न केवल स्वयं को आगे बढ़ाती है, बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रगति की राह दिखाती है। आज भारत की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, खेल प्रशासन, सेना और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। विकसित भारत के निर्माण में उनका योगदान अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। बहनों, किसी भी देश की प्रगति उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है। आज महिलाएं उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, कृषि सेवा क्षेत्र, स्टार्टअप और स्वरोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्वयं सहायता समूहों, छोटे उद्योगों, हस्तशिल्प, ऑनलाइन व्यवसाय और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहनों, आज विज्ञान और तकनीक का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिक और डिजिटल तकनीक भविष्य के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बहनों, विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा। जब महिलाएं इस विकास यात्रा की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता भी बनेंगी। शिक्षित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त महिलाएं ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं। बहनों, जीवन एक निरंतर यात्रा है। इस यात्रा में हमें अनेक चुनौतियां मिलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति बिना रुके बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वही सफलता प्राप्त करता है। तो इसी सकारात्मक सोच और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जो हमें सिखाता है परिस्थितियां कैसी भी हो हमें अपने सपनों और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं फिल्म स्वदेश की प्रेरणादायक गीत यूं ही चला चल, और इस गीत को उदित नारायण, हरिहरन और

बहनों, अभी हमने सुना गीत यूं ही चला चल, जिसे फिल्म स्वदेश से लिया गया था, और इस फिल्म को उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर ने गाया था। बहनों, बरसात का मौसम सभी को पसंद होता है। इस मौसम में वातावरण ठंडा और सुहावना हो जाता है तथा प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन बारिश के कारण हवा में नमी बढ़ने से त्वचा, विशेषकर चेहरे पर कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे तैली त्वचा, मुहासे से एलर्जी, खुजली और संक्रमण जैसी समस्याएं आम हो जाती है। इसलिए इस मौसम में चेहरे का विशेष देखभाल करना चाहिए। बरसात के मौसम में दिन में 2 से 3 बार हल्के फेस वॉश से चेहरा साफ करना चाहिए। इससे धूल, पसीना और अतिरिक्त तेल हट जाता है तथा त्वचा साफ और ताजा रहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बरसात में मॉइस्चराइजर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं है। त्वचा को मुलायम और स्वस्थ रखने के लिए हल्के पानी आधारित मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए। बहनों, बरसात के दिनों में भी सूर्य की हानिकारक किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना लाभदायक होता है। चेहरे की सुंदरता केवल बाहरी देखभाल से ही नहीं, बल्कि अच्छे खान पान से भी बनी रहती है। हरी सब्जियां, मौसमी फल और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है। नियमित सफाई, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, उचित त्वचा देखभाल और स्वच्छता अपनाकर हम अपने चेहरे को स्वस्थ, सुंदर और चमकदार बनाए रख सकते हैं। स्वस्थ त्वचा ही हमारे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखारती है। बहनों, इसी के साथ समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का। लीजिए सुनिए एक सूचना। पुलिस आयुक्त नगरी पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जाति अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड न करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी एडमिन की होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भी विश्वास करें और किसी भी संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति सौहार्द बनाए रखने तथा जिम्मेदारी नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत विकास गीत से। आज के कलाकार हैं कन्हैया लाल शुक्ला। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। पेश है वर्षा गीत, आवाज कन्हैया लाल शुक्ला।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। और आज हम आपको सुनवा रहे हैं कन्हैया लाल शुक्ला के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए कहरवा की आवाज कन्हैया लाल शुक्ला की।
1: बने रघुराई हो।

0: आई हो कहां सीता दुलारी।
1: इस गीत कहरवा गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गाए भजन।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। क्षमा कीजिए, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति तिवारी के गायक कुछ।

0: अभी आपने सुनी सूरदास की रचना, आवाज थी ज्योति तिवारी की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा

में रविवार दिनांक 12/7/2026 को शाम 7:30 से रात 8:08 तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान चाहते हैं वे दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से 8 तक आकाशवाणी भोपाल के फोन नंबर 2660902 और 2660903 पर फोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 से रात 8 के मध्य फोन नंबर 2660902 या 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।

स्वदेश इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। उदित नारायण, मास्टर विग्नेश, बेबी पूजा की आवाज में, शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत ए आर रहमान का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कार्यक्रम है फिल्म संगीत। अब सुनिए परदेस फिल्म का गीत, सोनू निगम, हेमा सरदेसाई, शंकर महादेवन की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत नदीम श्रवण।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना है। इंदौर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज आयोजित होने वाला माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव युवाओं के लिए नए अवसरों पर संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
1: 2025 को रोजगार और उद्योग वर्ष बनाकर प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना है। गरीब, युवा, महिला, किसान सभी वर्ग के कल्याण के लिए काम करने की आवश्यकता है। उसी सिलसिले में युवा और खास करके यूथ कॉन्क्लेव का आज का जो आयोजन है, ये हमारे भविष्य के मध्यप्रदेश के साथ आज का मध्यप्रदेश भी मजबूत बने, युवाओं को सब प्रकार का रोजगार मिले, उनके सपनों को पंख लगे, सरकार की योजनाओं के साथ उनको जोड़े और अब एक क्षेत्र सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने का और बड़े पैमाने पर काम जारी है।
0: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। इस अवसर पर प्रदेश में जन जागरूकता और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। आज राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है।

0: दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भिंड जिले के मुकेश सिंह भदौरिया ने योगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश भर में जिले का नाम रोशन किया। मत्स्याखेट पर लगे प्रतिबंध के बीच मत्स्य पालन विभाग ने नर्मदापुरम जिले के डोंगरवाड़ा और सुहागपुर में कार्रवाई कर 2000 किलो से अधिक मछली जब्त की है। शिवपुरी जिले में पसारा एक्ट 2005 के अंतर्गत सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला रोजगार कार्यालय में भर्ती शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर ने कल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिले के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन और अपार आईडी बनाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
3: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
3: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक।

0: आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
0: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्ष

0: श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर

0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30

ब्रिगेड आईएनएस महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोटकर, मनीष, मृत्युंजय, शिखा, पूनम देवास से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लंबी श्रीवास्तव। इसी गीत के फरमाइश करता है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। तो आइए आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म कलाकार से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म अजनबी से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर राही, सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, सुखी। विश्वकर्मा नगर नागपुर से इसे पसंद किया है शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, श्वेता, सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, परी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का गीत अजनबी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद करने करके भेजने वाले श्रोताओं के नाम है, पसंद अपनी पसंद भेजने वाले श्रोताओं के नाम है कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य आदित्य, शिवानी शिवाली और मीनू राज श्रीमाली। औरंगाबाद से इस गीत को की फरमाइश मिली है राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश की। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से इस गीत को सुनना चाहते हैं एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि राज रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं उनका समस्त परिवार। आप सब ने फरमाइश भेजी है जिस गीत की, बता दें आपको खुदगर्ज फिल्म का गीत आप लोग सुनना चाहते हैं नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत राजेश रोशन का। तो आइए आप सबकी पसंद का ये गीत सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म खुदगर्ज से, आवाज़ें नितिन मुकेश और साधना सरगम की।

खुद गर्ज इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज़ में, शब्द रचना तीन दीवर की और संगीत राजेश रोशन का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं, जिसे जिसकी फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम है दत्तरंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगापुर से सालिक पुजारी, भोपाल से कुसुम ज्योति, अर्जुन वर्मा, परी वर्मा, मिष्टी लक्ष्मी, भूपेंद्र वर्मा। करूलाबाद मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार।

इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ की। आप सब सुनना चाहते हैं जब जब फूल खिले फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में। इसे एक बार फिर सुन लीजिए, जब जब फूल खिले फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र दिनेश कुमार। कार्यक्रम के की अंतिम फरमाइश हमने ली है, जिसे भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, रिदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा, मुज्तबा खान, राव भाई, शाहिद भाई, गांधीनगर अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये, गौतमनगर जिला नांदेड़ से इसी गीत को पसंद कर रहे हैं प्रभाकर जुंदले, आरती जुंदले। आप सबकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूती नींव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में भील जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी 30 जुलाई तक रहेगी और प्रदेश में अगले दिन तीन दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर, 6:30 पर और रात 8:15 पर। पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम होगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय है 7:45। रात 8:00 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कार भारती और रात 10:00 संगीत के अखिल भारती कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:01 और 56 सेकंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ। हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हैदराबाद में कहा कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5000 युवा हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्जवल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे महान उपन्यासकार भीष्म साहनी के विषय में। साथ ही आज हम बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के बारे में, होंगी कुछ अन्य जानकारियाँ और सुनवाएंगे कुछ गीत भी। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे महान साहित्यकार के विषय में जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत विभाजन की त्रासदियों, सांप्रदायिक राजनीति की भयावहता और आम आदमी के संघर्षों का अत्यंत सजीव और सरल भाषा में चित्रण किया है। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ महान उपन्यासकार भीष्म साहनी के विषय में। मुंशी प्रेमचंद की परम्परा का अग्रणी लेखक माना जाता है। उन्हें एक सशक्त उपन्यासकार के रूप में विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त है। उनके प्रमुख उपन्यास हैं तमस, झरोखे, बसंती, कुड़िया, कुंतो, जिसमें तमस उनका सबसे प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास है। ये भारत के 1947 के विभाजन के समय हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस उपन्यास में धार्मिक कट्टरता और राजनीति की भयावहता को उजागर किया गया है। उपन्यास झरोखे में मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं, रूढ़वादिता और सामाजिक संघर्षों का यथार्थ चित्रण है। उपन्यास बसंती में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक मेहनत

दिलकश और संघर्षशील लड़की की कहानी है। वहीं कुछ उपन्यासों में मानवीय संबंधों की जटिलताओं, वैज्ञानिक पहलुओं और बदलते सामाजिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। दोस्तों, एक उपन्यासकार होने के साथ साथ भीष्म साहनी ने 100 से ज्यादा कहानियां भी लिखी। उनकी कहानियों में सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदना गहराई तक दिखाई देती है। प्रमुख कहानियां हैं चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है, वागनचू, पाली और पटरियां। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रहों में भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख और निशाचर शामिल हैं। प्रमुख नाटक, हिंदी रंगमंच और नाटक की दुनिया में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके नाटक अपनी वैचारिक गहराई और शिल्प के लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ और भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे हानुष। ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो अपनी कला के प्रति समर्पित हैं और उसे संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। वहीं नाटक कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के दर्शन और उनके सामाजिक सुधारों पर आधारित है। दोस्तों, साहनी जी एक उत्कृष्ट अनुवादक भी थे। उन्होंने अपने बड़े भाई और प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी की जीवनी बलराज माय ब्रदर अंग्रेजी में लिखी। उन्होंने रूसी भाषा से कई कृतियों का अनुवाद हिंदी में किया, जिसमें टॉल्स्टॉय का उपन्यास पुनरुत्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भीष्म साहनी जी को साहित्य के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए कई सर्वोच्च सम्मानों से भी नवाजा गया। उनके उपन्यास तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1998 में पद्म भूषण, 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप। इसके अलावा 1983 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और 1981 में एफ्रो एशियाई लेखकों का लोटस पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, 11 जुलाई को महान हिंदी लेखक, नाटककार और अभिनेता भीष्म साहनी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। उन्हें सत सत नमन। दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत राहत फतेह अली खान की आवाज में, आजा नचले फिल्म से।

अब हम बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के विषय में, जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य भारत की सदियों पुरानी और बिखरी हुई पांडुलिपियों को खोजना, उनका दस्तावेजीकरण करना और आधुनिक तकनीक व डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से उन्हें संरक्षित करना। इस मिशन का लक्ष्य भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा जैसे दर्शन विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और कला को सहेजना और दुनिया भर के शोधकर्ताओं व आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। इसके तहत पूरे देश की बिखरी हुई पांडुलिपियों की जानकारी एकत्र करने के लिए ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। ताड़ के पत्तों और भोजपत्र जैसे प्राचीन दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए रासायनिक उपचार के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और जटिल संग्रह यानी कृति संपदा रिपोजिटरी का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, संस्थान या परिवार जिसके पास प्राचीन पांडुलिपियां हैं, वो ज्ञान भारतम ऐप के माध्यम से सीधे तौर पर इस सर्वेक्षण में शामिल होकर जानकारी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये।

0: दोस्तों, हम स्कूल की पढ़ाई के साथ दूसरे कोर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
1: दोस्तों, आज मेरे साथ हैं शुभी द्विवेदी और आज हम बताएंगे कि आप कैसे अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी भी कर सकते हैं। मेरे साथ शुभी हैं और शुभी नीट की तैयारी कर रही हैं अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ।
2: नमस्कार, मेरा नाम शुभि द्विवेदी है। मैं जिला रीवा से हूँ और मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं स्कूल के साथ साथ नीट की भी तैयारी कर रही हूँ।
0: तो शुभि, आप ये बताइए, आप स्कूल के साथ साथ नीट की तैयारी कैसे कर पा रही हैं? आप टाइम मैनेज कैसे कर पा रही हैं? कैसे आप स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ नीट की परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए समय निकाल पा रही हैं?
2: जी, पहले तो मैं सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं 3 से 6 बजे तक थोड़ा रिवीजन करती हूँ, फिर 6 से 8 बजे तक मैं थोड़ा सुबह का रूटीन और स्कूल के लिए रेडी होना,
0: अच्छा,
2: फिर 8 बजे के बाद मैं खाना वगैरह खा करके स्कूल चली जाती हूँ, फिर 10 से 4 का मेरा स्कूल है, 4 से 8 तक का मेरा ट्यूशन है, नीट का ऑनलाइन है।
0: ऑनलाइन कोर्स लिया आपने नीट के लिए।
2: फिर 8 से 8:30 तक मैं खाना वगैरह खा लेती हूँ, फिर 8:30 से 10 तक मैं थोड़ा होमवर्क वगैरह करती हूँ स्कूल और ट्यूशन का, फिर 10 से 11 एक बार रिवीजन करके फिर सो जाती हूँ।
0: किसका रिवीजन करते हैं आप 10 से 11?
2: नोट्स का, जो नोट्स
0: तो
2: बनाती
0: नीट
2: हूँ।
0: का या स्कूल का?
2: दोनों का सेम सिलेबस रहता है।
0: सेम ही सिलेबस,
2: बस अच्छा। थोड़ा नीट में थोड़ा डिटेल से और स्कूल वाले में थोड़ी ज्यादा थ्योरी रहती है और नीट वाले में थोड़ा न्यूमेरिकल्स।
0: अच्छा, मतलब नीट के सिलेबस के हिसाब से आप रात में भी उसका रिवीजन करती हैं और फिर सोती हैं, है ना? अच्छा
2: जी
0: ठीक है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी करना आपको आसान लगता है?
2: हाँ, इजी है, दोनों का सिलेबस सेम ही है
0: मतलब
2: थोड़ा।
0: कोई स्टूडेंट चाहे तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कोर्सेज की तैयारी कर सकता है?
2: हाँ, कर सकता है।
0: अच्छा,
2: हाँ, चाहे तो कर सकता है।
0: तो बाकी श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहती हैं जो आप ही की तरह अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं?
2: उन्हें मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप भी चाहें तो अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपने एम के लिए टाइम दे सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, तो आपका जो ड्रीम है वो भी पूरा हो जाएगा। और आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा इस टाइम में।
0: मतलब बाकी जो स्कूल के बाद बचा हुआ समय है उसको आप दूसरे कोर्सेज की तैयारी के लिए यूज कर सकते हैं, है ना?
2: हाँ
0: जी, बहुत अच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपकी पढ़ाई के लिए।
2: ठीक है, थैंक यू।
0: दोस्तों, अब हम सुनते हैं ये गीत दिल कबड्डी फिल्म से राहत फतेह अली।

दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे असम के चराईदेव मोईदाम के बारे में। ये अहोम राजवंश के शाही परिवारों और राजाओं के ऐतिहासिक समाधि टीले हैं। इन्हें अक्सर असम के पिरामिड भी कहा जाता है। ये स्थान अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को द्वारा भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। दोस्तों, 1253 ईस्वी में अहोम राजा चाओ लुंग सिउ का फा ने इसे अपनी पहली राजधानी बनाया था। 600 वर्षों के अहोम शासन के दौरान चराईदेव मोईदाम को प्रतीकात्मक और पवित्र केंद्र माना जाता रहा। इन समाधियों में मृत राजाओं के नश्वर अवशेषों को उनकी संपत्ति, आभूषण और अन्य जरूरी चीजों के साथ गुंबद के आकार की तिजोरियों में दफनाया जाता था और ऊपर से मिट्टी का टीला बना दिया जाता था। दोस्तों, चराईदेव मोईदाम एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो असम के चराईदेव जिले में स्थित है, जो कि शिवसागर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी रीवा के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण अभी किया जा रहा था।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए।

0: श्रोताओं, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक संहिता 2000
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विशाल ददलानी की आवाज़ में, कुमार का लिखा गीत, संगीत है विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं फिल्म आई हेट लव स्टोरीज का ये

शंकर महादेवन और अलाइजा मेंडोंसा की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आप सुनते हैं, जो हमने लिया है फिल्म बैंड बाजा बारात से। सलीम मर्चेंट और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत और संगीतबद्ध किया है सलीम सुलेमान ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हाउसफुल से। मीका, सुनिधि चौहान और साजिद खान की आवाज़ें हैं। समीर के लिखे बोल और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।
1: People on the floor.

0: बचाव कर लें तो हमारी जो बकरियां हैं।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक।

न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट
2: अपने बिजनेस को

0: एचआईवी की जांच भी करवाना, क्योंकि एचआईवी का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर एचआईवी पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए एआरटी केंद्र से एआरटी ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर एचआईवी की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

श्रोताओं, आपके लिए एक विशेष सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं समसामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में आयोजित माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5000 युवाओं ने हिस्सा लिया। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भिंड जिले के लहार से लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करेंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियां और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव हैं। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथ एम्पटन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6 बजने को है। अब प्रस्तुत है पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आज विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबिलिटी माइंडफुल कंजम्पशन अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है।
4: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में 3 तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे
3: जी।
4: तो इसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
3: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही धुरी है आपके पूरे जो मुहिम की, उसको और

0: गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
1: जब माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
0: जी,
1: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो, और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
0: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
1: बिल्कुल,
0: ये नीड और वांट का जो अंतर है क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
1: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है, लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है, पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं x से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी तीन गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए, किसी का वो भड़ास फ्रस्ट्रेशन वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं x से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6-figure सैलरी कमा रहे हो, तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वैकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि whether we are so called successful or not, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर
0: जी,
1: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से
0: जी। तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
1: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होता है दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का एमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का एमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में है तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं, तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल है वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
0: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी

0: ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं?
1: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाए, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें। तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने, फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का। अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
0: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न है उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर?
1: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर जो इलीट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी। और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एनेबल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
0: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जांपल्स देके?
1: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके

0: हमने कीप इट, तो उनका इमोशन से एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जीन्स बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जीन्स के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: सो आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते
0: हैं, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं, तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है, तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है, और फिर नीड है कि वांट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूं या खरीदती हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा, तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशन इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कम्पीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता है ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है, और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया X से 3X और 5X की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहाँ जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री।

0: होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है?
1: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड। लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना, मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
0: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है, जैसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
1: तो जब भी हम लोग माइंड और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर यह धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
0: जी।
1: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है। क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
0: जी,
1: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस। क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
0: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
1: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कारपूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रैवल। तो 12 एयर ट्रैवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रैवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
0: Yes.
1: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है
0: जी।
1: चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही है, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलती है वहां अनरीड दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम इमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे इमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रैवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
0: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
1: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशंस बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ,
0: हाँ,
1: तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
0: जी।
1: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की

0: जरूरत है। और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है। वो
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होता है ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में।
0: तो इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है। इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इंपल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था एस्टैब्लिश की जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ है, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो है, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021

0: में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार के निकला कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म कपूर एंड सन्स का ये गीत। अरिजीत सिंह, आशीष कौर की आवाज़ें हैं। इस गीत को लिखा डॉक्टर देवेंद्र काफिर ने और संगीत है अरमान मलिक का।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से। इस गीत को लिखा है, गाया है और संगीत दिया है अखिल सचदेवा ने। आइए सुनते हैं।

प्रिया सरैया का लिखा गीत आप सुन रहे थे फिल्म भूमि से। इस गीत को गाया था राहत फतेह अली खान ने और संगीत था सचिन जिगर का। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत फिल्म टू स्टेट से। इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म जॉली एलएलबी 2 से। जुनैद वासी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था चिरंतन भट्ट ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म राब्ता से। अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, संगीत है प्रीतम का।

0: श्रोता, फिल्म राब्ता के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
5: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी
6: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9-सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रथिका प्रदीप और चिकित्सा तनिपार्थी की तिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से 228-232 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रथिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक अपने नाम किया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 पर। कार्यक्रम संस्कृति भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर किया जाएगा और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटक वीणा वादन रात्रि 10:00। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल यानी रविवार 12 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे देवेंद्र सिंह और साथियों द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गायन शिक्षण पाठ और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत का आनंद लीजिए सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा दोपहर 12:00 और रात्रि 9:30। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है कि 11वीं कड़ी आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद पुनः लीजिए दोपहर 2:00, शाम 5:33, शाम 6:00 और रात्रि 8:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की होगी। कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत किया जाएगा और सजीव फोन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण 7:30 पर होगा, जिसमें श्रोतागण डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा से बातचीत कर सकेंगे। विषय होगा धान की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं समसामयिक कार्य। रात्रि 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम डगर विकास की आकाशवाणी गुना के योगदान से 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसका विषय होगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और अखिल भारतीय रविवासी संगीत सभा में कल सुनिए कुमार मरदुर का गायन, इसका प्रसारण रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 12 जुलाई 2026 रविवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाए मिल मधुर गान

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को हो जाएगा दोगुना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की अपनी 3 देशों की यात्रा पूरी करने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में मेरा युवा मेरा गौरव सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 युवा कल्याण का वर्ष होगा। युवाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़कर प्रदेश के विकास और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भागीदारी को सशक्त बनाया जाएगा।
2: 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी तरह परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था।
0: वहीं महू के युवा किसान जितेंद्र पाटीदार ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण किसानों की आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार है। मार्केटिंग और डिजिटल तकनीक से प्राकृतिक उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाकर किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है।
3: मैं जितेंद्र पाटीदार, निवास ग्राम सिमरौल, विकासखंड महू, जिला इंदौर का प्राकृतिक खेती करने वाला कृषक हूँ। प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण, भूजल संचय, जैव विविधता और प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम संतुलन और आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
0: सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विकास और नीति निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करना था। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि देश और उसकी जनता को समझने के लिए पढ़ने की आदत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकालय राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है और इनके जरिए देश की संस्कृति और ज्ञान परम्परा की जानकारी लोगों तक पहुँचती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को जिला भिंड के लहार में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक बहनों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधा अंतरण करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजनाओं की शुरुआत से अब तक की 38वीं नियमित मासिक किस्त का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा और सशक्त माध्यम है। हमारे सांदीपनी विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रदेश में शिक्षा की त्रिवेणी बन रही है। आज इंदौर में हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्राथमिक स्कूली शिक्षा स्तर पर ड्रॉपआउट दर को शून्य करने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे सांदीपनी विद्यालय मॉडल की पूरे देश में सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना और सतत विकास की दिशा में प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। आज और भविष्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव हैं। इस अवसर पर प्रदेश में भी जन जागरूकता रथ और रैली के साथ विश्व जनसंख्या सप्ताह की शुरुआत हुई। इस दौरान 18 जुलाई तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में फिलहाल तेज बारिश से कुछ राहत मिलने वाली है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 14 जुलाई से कुछ जिलों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में आज मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग ने लंबित प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की। खंडवा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आगामी 13 जुलाई को आयोजित होगी। देवास जिले में डायरिया से होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के उद्देश्य से स्टॉप डायरिया अभियान का संचालन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में दस्तक अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। नर्मदापुरम शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी कंपनियों और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने के लिए 15 जुलाई को नर्मदापुरम में युवा संगम रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन होगा। जबलपुर में व्यापार और उद्योग जगत में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की वुमेन्स विंग का कार्यक्रम कल रविवार को आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल में बैठे और हम आओ चौपाल कार्यक्रम सुन बारी सभी भैया बहन का जी चंदा बहन और
1: रूपेश भैया की
0: राम राम। और सुना रूपेश भैया कैसे हो, सब राजी खुशी है
1: और बढ़िया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं कार्यक्रम चौपाल, तो हमारे सभी भैया बहन अच्छे से होंगे, यही हम आशा कर रहे हैं।
0: और भैया देखो अपन जन परिवार में रहते हैं तो अपन हमेशा यही चाहते हैं कि अपन अपना परिवार सब खुशहाल रहे। एक खुशहाल परिवार की चाह तो देखो हर एक करते हैं, जो ही चाहते हैं अपन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खूब उन्नति करें, परिवार को हर एक सदस्य आगे बढ़े। और देखो चाह वो तो सबके लाने चाहिए ही और चाहत भी है, पर ये तभी संभव हो सकते हैं रूपेश भैया जब परिवार छोटो यानी कि सीमित होएगा।
1: सही बात कहनी मैंने आप। और एक हर परिवार की एक निश्चित वो होना चाहिए कि मतलब कोई भी चीज़ की ना कम हो और ना ज़्यादा हो। तो भैया बहनों भगवान ने धरती पे सबके लाने व्यवस्था बनाई है, पर जनसंख्या जब बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो संसाधन भी कम पड़ने लगाते हैं। और अपन खेती की बात करें तो खेती कई होते कई हैं, पानी की मात्रा भी कम ही है, जंगल भी सीमित हैं। तो भैया जरूरत लोगों की, जरूरतमंद लोग भी बढ़ जाते हैं और यही वजह से विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ जाओ।
0: बिल्कुल।
1: तो बहन खेती की बात अगर अपन जैसे पहले के जमाने में किसान भैयाओं के पास अच्छी खासी जमीन रहती थी, पर समय के संग संग परिवार बढ़ो तो जमीनें बेटन में बढ़ गई और हमारे कई किसान भैया ने हिस्सा देने पड़े और बहुत कम जमीन बची। तो जैसे कहा हुआ कि छोटी जोत में खेती से लागत ज्यादा और आमदनी कम होने लगी और बेरोजगारी की समस्या की भी बात आने लगी।
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया। और देखो सरकार की जो योजनाएं होते हैं बिनके लाने भी संसाधन कम पड़ जाते हैं। और जैसे जनसंख्या जो अपन कहते हैं ना, मुख्य रूप से तो जो देश को कोनो भी देश को विकास होता है वह में सबसे बाधक होता है। तो कैसे कि जो देश में जितने जनसंख्या तो ज़्यादा है, संसाधन उतने है नहीं है, तो विकास होएगा कैसे। तो देखो आज है विश्व जनसंख्या दिवस भी, तो देखो कोई भी दिवस मनावे को देश ये होते हैं कि बाकी प्रति जागरूकता आए लोगों के अंदर। तो देखो शासन तो अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के द्वारा लोगों के लाने जागरूक करते हैं, पर अपन और उनको भी जो ये कर्तव्य बनते हैं, अपने फर्ज बनते हैं कि अपन सब मिलके जा दिशा में जागरूक होएं, खुद समझदारी से काम करें, संगे दूसरों के लागे लाने से जाके बारे में बताएं, अपन जाके गंभीरता को विचार करो। ऐसे एक या दो बच्चा ही होनो हर एक परिवार के लाने तब अच्छो है, कैसे कि वो तब ही सुखी और समृद्ध हो सकेगा।
1: सही बात कही बहन। अब अपन देखें तो एक जनसंख्या बढ़ने में सबसे बड़ी वजह है वो है बेटी की चाहत। मतलब बेटे की चाहत में क्या होता है कि बेटियां जैसे हैं तो बेटे की चाहत में भी मतलब उनको जो लगता है कि बेटियां के अलावा बेटा की जरूरत बहुत है। तो बेटे की चाहत में कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ने का एक मूल कारण भी देखने में आता है।
0: बिल्कुल आपने एकदम ही बहुत ही अच्छी बात करी ये रूपेश भैया। और जो विषय ऐसा है जहाँ पे गंभीरता से आज बातचीत करनो, विचार करनो और जाके बारे में तो बहुत ज़्यादा सबको समझने की ज़रूरत है। हम सोच रहे हैं कि विषय जो काफ़ी गंभीर है, अपन जा पे और विस्तार से चर्चा करेंगे कि बेटी को क्या महत्व है, बेटी है तभी कल है, पर अपन जरा पहले सुन लेते हैं जो संदेश।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
4: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: सो देखो भैया, अपन ने जो संदेश भी सुन लो और बात अपन कर रहे थे बेटी के महत्व के बारे में। और देखो, समाज में वैसे तो अपन देख रहे हैं कि मुल्क तरह की समस्याएं हैं। अपन जनसंख्या की बढ़ने की यही समस्याएं बात कर रहे थे और बात कर रहे थे बेटी के बारे में। तो इन सब में बड़ी समस्या है कि क्या हो रहा है, बेटा और बेटियों को जो लिंगानुपात में अंतर आ रहा है और जो दिन पे दिना बढ़त जा रहा है, जैसे और भी मुलक तरह की गंभीर समस्याएं अपन ने सामने ठाड़ी होंगी और ठाड़ी हो भी रही हैं। कैसे कि अगर तेजी से लड़कियों की संख्या में कमी भई तो आने वाले टाइम में जो समस्या कितनी विकराल हो जाएगी, जो अपन जाको अंदाजा लगा भी पा रहे हैं, हम कैसे कह रहे हैं लगा भी नहीं पा रहे हैं। कैसे अगर ऐसा हो रहा हो तो अपन जाके प्रति समझदारी से रहते, बात समझते। सो भैया, जरूरत है आज अपन जागें और बेटियों के महत्व का जे समझें। कैसे के जे समझ लियो कि बेटी है तभी कल होगा।
1: और बहन एक बात और कहेंगे हम कि अपन देख रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या भी दिनों दिन बढ़त जा रही है, और जहाँ का होता है कि जनसंख्या बढ़ने से ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। माने अपन देखें तो हर साल लाखों युवा बेरोजगार की तलाश में निकल आते हैं घर से, और जिन सबको उद्देश्य आजकल अपन देख रहे हैं युवाओं को कि नौकरी पावर है अभाव है, और जो ऐसा तो है नहीं कि सबके काज नौकरी ही मिले, और सरकारी नौकरी के पीछे तो दिन रात भी भाग दौड़ कर रहे हैं। पर बहन अपन देख रहे हैं कि दिनों दिन प्रतियोगिता भी बढ़त जा रही है, तो हम ऐसे युवाओं से यही कहेंगे कि पढ़ाई के संगे संगे आप कोनो अलग से हुनर सीखें, कोनो बड़ाई कारीगरी पेंटिंग ड्राइवरी प्लम्बरी ऐसे कोनो भी ऐसे काम सीखें।
0: हाँ देखो भैया, बिल्कुल आपने सही बात कही। और जो हम बात कर रहे हैं, देखो बेटी ये तो वही कल है, तो बेटी नहीं होगी तो ना माँ बहन पत्नी कोनो भी रिश्ता भी नहीं होगा, ना ही समाज देश और यहाँ तक कि सृष्टि जो जीवन भी रहेगा। और जैसे अपन कह रहे हैं, देखो कोनो न कोनो जो परेशानी आते हैं बाकी पीछे मुलक सारे कारण होते हैं। जैसे अपन आप ही बात कर रहे होते हैं जनसंख्या की बात कर रहे हैं, वहाँ में फिर कछु कुप्रथाएँ भी होते हैं, कछु कुरीतियाँ भी होते हैं। जैसे दहेज प्रथा की बात कर लें अपन, अशिक्षा की बात कर रहे हैं, ये भी ऐसा कारण है जहाँ से अपन बेटियन के लाने जो अपन कन्या भ्रूण हत्या भी हो रही, तो कछु अंधविश्वास जो भी कन्या भ्रूण हत्या को बहुत बड़ा कारण है। कैसे कि जब समाज में हर एक आदमी जा दिशा में अपनों सहयोग नहीं करेगा, बेटियन के महत्व का जे नहीं समझेगा, तब तक सुधार नहीं आएगा।
1: अबे हम तुझे ही कहेंगे भैया से कि बेटियां भी आजकल अपने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, उन्हें भी आप ऐसा ना समझें कि बेटा ही सब कुछ हुए, और ऐसा कोनो क्षेत्र नहीं है जो उन्हें बेटियां अपना नाम रोशन नहीं कर रही हैं। चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कोई कोनो भी ऐसा काम हो जहाँ में बेटियां अपने बढ़ चढ़ के अपने गाँव को अपने शहर को अपने देश को नाम रोशन कर रही हैं। और एक बात अपन दिखाते हैं कि बेटा धोखा दे सकता है, पर बेटियां अंत समय तक अपने माँ बाप को ध्यान रखते हैं, उनकी शादी के बाद भी बेटों से ज़्यादा उनके अपने माँ बाप की चिंता रहते हैं। जी अपन आजकल देख रहे हैं, तो विश्वास करें और बेटियों को भी बेटों से आप कम ना आके।
0: बिल्कुल कम ना आके उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ने के अवसर दें भैया। कैसे कि एक पढ़ी लिखी बेटी होगी तो एक परिवार भी पढ़ेगा, और एक परिवार पढ़ेगा, पढ़ी बेटी होगी तो बच्चे पर बच्चे के लाने संस्कार भी देगी, और फिर अपने देश के जो भावी कर्णधार हैं वो भी भैया अच्छे सुसंस्कृत होंगे, तो अपना देश भी उन्नति करेगा। जब सब पढ़े लिखे होंगे तो जो जो जनसंख्या बढ़ रही है, जब भी देखो आपस में जुड़ी हुई बात हो गई जी, कि जनसंख्या पर नियंत्रण तभी होगा जब अपनी अशिक्षा कम होगी, लोग जाके बारे में समझेंगे, जागरूक होंगे, तो भाई तो बेटी पढ़ेंगी तो जाहिर

0: लोग पढ़ेंगे, परिवार पढ़ेंगे और वो समझदार भी होंगे। तो उम्मीद करते हैं जहाँ पे सब मिलके विचार करो हो, जहाँ दिशा में सहयोग जरूर करो हो। और देखो जय के संगे चौपाल कार्यक्रम से हो गई है चलवे की बेरा, तो रूपेश भैया अपन ले लेते हैं विदा। तो सभी भैया बहन का जय, रूपेश भैया और चंदा बहन की राम राम,
1: जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान।
5: किसान वाणी कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है, और सब आप सभी का जय रूपेश भैया और
4: चंदा बहन की राम राम।
5: तो भैया, अपन देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लाने प्रधानमंत्री मानधन योजना को आरंभ करवाए। तो भैया, जो एक पेंशन योजना है, और अपन जाके बात करें तो जाके घोषणा जून 2019 में भई, और जाके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जीवन बीमा निगम LIC के लाने दी गई है। और अपन देखेंगे अगर जाके उद्देशन की अगर बात करें तो हमारे किसानों का जो पेंशन द्वारा लाभ प्रदान करना, जैसे किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होते हैं, और भैया जाको लाभ लेवे के कछु शर्तें सोई है।
4: हाँ भैया, बिल्कुल आपने सही कही रूपेश भैया। जब मैं कछु बात हम जोड़वो चाहेंगे कि जाके तहत 10 से 15 करोड़ किसानों का जो योजना में शामिल करने की बात भी तय करी गई, और किसानों को जैसे काय मनोबल बढ़ेगो, कैसे कि जब आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होते है तो आदमी को मनोबल तो बढ़ता ही है कि नहीं भैया? तो जैसे आपने शर्तों की बात कही, तो क्या शर्तें हैं आप बता दो।
5: शर्तों की बात करें तो जहाँ 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसान भैया बहन काजे शामिल करो जाएगा, और जाके लाभ पति और पत्नी दो ही ले सकते हैं।
4: अच्छा भैया,
5: बस शर्त जो है कि दो ही काजे अपनो अलग अलग अंशदान देने होगा, और जब किसान भैयाओं की आयु 60 साल पर होते तब जाग बार
4: पार हो जाएगी, 60 साल की हो जाएंगे,
5: बाकी 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा चालू होते।
4: अच्छा भैया,
5: हाँ।
4: और देखो, अगर कोनो कारणवश जामे जे भी है कि अगर जैसे किसान भैया की मृत्यु हो जाते है, तो फिर 50% पेंशन बाकी पत्नी का जे मिलेगी। पर जामे भी ये बात है कि वो पहले से कोनो योजना को लाभ नहीं उठा रही हो, वो भी जरूरी है। और भैया देखो, प्रधानमंत्री जो ये मानधन योजना है, पेंशन योजना है, जो जामे लगाओगे जो पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ही जमा कराओ जाएगा, बताई वो पैसे आते हैं, बताई से लेन देन होते, तो खाता होगा बहुत जरूरी है। और देखो, जाको एक बात और है कि जाको लाभ सिर्फ लघु और सीमांत किसानन के लाने ही नहीं है, बल्कि जा योजना में सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानन का जे जोड़ के ज्यादा से ज्यादा लाभ देवो चाहते
5: हैं। बात और क्या हो जाएगा भाई, मैंने हमारे किसान भैया पूरे देश के अन्नदाता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, खेतन में फसलें उगाते हैं, जब जाके हमारी सबकी थाली भराते हैं। पर जब हमारी किसान भैयाओं की उम्र बढ़ जाती है, तब खेत में पहले जैसी मेहनत करो आसान नहीं रहते बिन काजे, तो ऐसे समय में

0: नियमित आमदनी को सारा बहुत जरूरी है। तो जय सोच के संगे जो
1: जय योजना की
0: किसान आमदनी शुरू करी गई है।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया बहनों, हमारे किसान भैया जो सोचते हैं कि अबे तो उम्र कम है, बाद में देख लेंगे, पर याद रखें कि जितनी जल्दी जय योजना से आप जुड़ेंगे उतने कम मासिक अंशदान अपने

0: और उसकी पत्नी को नाम जन्म तिथि देना पड़ता है, जमीन की खसरा खतौनी की नकल, बैंक खाता और बैंक को IFSC MICR कोड जो होते हैं, बाकी जानकारी भी लगते हैं। और भैया किसान को मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट से सीधे हमने पैसे बताई, तो जब बात को जरूर ध्यान रखने हैं। तो ये सब अपन ने आवेदन के लाने देने पड़ते हैं। और भैया अपन जब प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लाने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं, जैसी सुविधा है तो आज से अच्छा और का हो सकता है कि जहाँ अपन इतनी आसानी से जब में अपन भाग ले सकते हैं, जाको लाभ ले सकते हैं जाको।
1: और बहना मुझे और बात करेंगे भैया से कि आज छोटी बचत बुढ़ापे की बड़ी राहत होते है, तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अपनाएं और भविष्य सुरक्षित बनाएं।
0: हाँ भैया बिल्कुल जावत बहुत जरूरी है। और देखो आज हम जो अब भैया के लाने सोच रहे हैं कछु भेंट वार्ता सुनाएं जिसे वे लाभ उठा सकें, तो बरसात है, बरसात में पशुओं को बीमारियों से कैसे बचाएं, जब विषय पे आज हम जो भेंट वार्ता भैया के लाने लेके आए भय हैं जो पुनः प्रसारित कर रहे हैं और जामे जो जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर चंदन सिंह। तो चलो अपन सुन लेते भैया जो।
1: हाँ बिल्कुल।
2: किसान भाइयों, हम खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय करते हैं और पशुपालन व्यवसाय तेजी से उभरता हुआ एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिससे हमें साल भर आमदनी मिलती है। पशुओं में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी आरंभ हो जाती हैं, तो इन बीमारियों से पशुओं को कैसे बचाया जाए ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें और उनसे अच्छा उत्पादन मिले, इसी संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे कार्यक्रम में है डॉक्टर चंदन सिंह बाथम, विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार आपको।
3: नमस्कार किसान भाइयों।
2: हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में ऐसे कौन कौन से प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हमारा पशुधन प्रभावित होता है और उनका उत्पादन घट जाता है।
3: किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो संक्रमण की जो दर होती है वह बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारे पशु वर्षा ऋतु आती है एकदम से नमी हो जाती है। नमी के आने से ये होता है कि पशु यदि कोई बीमार है और गलती से अगर वह पशु कहीं बाहर चरने चला गया तो वह अन्य पशुओं को भी संक्रमण देने में पीछे नहीं रहता। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है इसमें उमस भरा मौसम शुरू हो जाता है, जैसे ही ये उमस चालू होती है, ह्यूमिडिटी जैसी बढ़ती है, तो विभिन्न प्रकार के रोग, संक्रमण और परजीवी इनका विस्तार होने लगता है। जैसे ही इनका विस्तार होता है पशु संक्रमित होना शुरू हो जाते हैं। यदि हम अपने पशु की अच्छी सी देखभाल करना चाहें तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा उसके खान पान और उसके बाहर निकलने पर, जैसे वह चरने जाता है और आप चरा कर उसको लाते हैं तो उसका प्रबंधन जो है वह बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। साथ ही यदि पशु अपना बीमार है तो उस रोगग्रस्त पशु को बाहर कभी भी चरने के लिए ना भेजें। इससे होगा ये कि जैसे ही आप उसको बाहर भेजेंगे तो वह अन्य पशुओं को भी संक्रमित कर देगा।
2: तो ये कहा जाए कि पशुओं में मुख्य कारण जो है सही बरसात का मौसम आरंभ होता है, नमी बढ़ जाती है और नमी बढ़ने की वजह से बीमारियाँ भी बढ़ने लगती। तो ऐसी प्रमुख कौन कौन सी बीमारियाँ हैं
3: किसान भाइयों
2: जिनकी संभावना बनी रहती है?
3: किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आजकल जो प्रमुख बीमारी है हमारे यहाँ वह है गलघोंटू। गलघोंटू रोग के विषय में आप सभी परिचित हैं, यह कितनी खतरनाक बीमारी है सभी जानते हैं। इस बीमारी का उद्गम जो है वर्षा ऋतु जैसी प्रारंभ होती है वैसे ही यह बीमारी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच जाती है। इसके विषय में हर साल हमारे यहाँ पशुपालन विभाग के द्वारा सभी ग्रामों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। यदि आपके जो भी 4 माह से ऊपर के बच्चे हैं उनसे लेके बड़े पशुओं में सभी को टीकाकरण करवा लें तो हम इस बीमारी पर रोक लगाने में सक्षम हो जाते हैं। यदि फिर भी इस बीमारी के कारण आपका पशु ग्रसित है तो निकट के पशु चिकित्सालय में आप पहुंचकर वहां पर अपना इलाज प्रारंभ करवाएं, क्योंकि यह बहुत घातक बीमारी है, इसमें पशुओं की मृत्यु निश्चित है। यदि समय से आप इसका उपचार करा लेंगे तो इस बीमारी पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपने इसमें जरा सा भी लेत ला ली या थोड़ी देर सवेर कर दी तो हमारा पशु हमारे हाथ से निकल जाता है। इसके बाद जो अगली बीमारी आती है वह लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह भी बहुत एक खतरनाक बीमारी है। जो भैंस वंशी पशु हैं इनमें तो बहुत ही विशिष्ट संक्रमण होता है, अगले पैरों में सूजन आ जाती है, लंगड़ाने लगता है, पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। साथ ही

0: यदि इसका उपचार या देखभाल नहीं की गई तो पशु की मृत्यु तक हो जाती है। इस बीमारी का भी टीका वर्तमान में सभी संस्थाओं पर उपलब्ध है। अपने निकट के पशु चिकित्सालय अथवा पशु औषधालय में संपर्क कर वहाँ पर आप इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें। साथ ही यदि कोई पशु बीमार होता है तो उसका उपचार प्राथमिक रूप से शुरू कर दें, क्योंकि यह बीमारी ऐसी है कि जब ये लक्षण प्रकट करती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह शरीर के अंदर पाई जाने वाली बीमारी है। यह मांसपेशियों को अवरुद्ध कर देती है, उनका पशु चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। इसके बाद जो एक अन्य बीमारी है वह खुरपका मुंहपका। इस बीमारी के विषय में भी आप सब जानते हैं, क्योंकि यह बीमारी जैसे शुरू होती है तो खुर में और मुंह में दोनों जगह छाले हो जाते हैं। पशु खाने पीने से लाचार हो जाता है, चलने फिरने से लाचार हो जाता है, और इसकी संक्रमण दर इतनी तेज है कि यदि कोई संक्रमित पशु को आपने चरने के लिए यदि बाहर भेज दिया तो वह अन्य पशुओं को भी संक्रमित कर देगा। जहाँ जहाँ इसकी लार गिरेगी वहाँ वहाँ अगर दूसरा पशु उसके संपर्क में आएगा तो वह भी रोग ग्रसित हो जाएगा। साथ ही जब जब ऐसे पशु की पहचान आप कर लेते हैं तो ऐसे पशु को हमें अपने बाड़े में अन्य पशुओं से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, और उसकी देखभाल भी हमें अपने स्तर से अलग से करना चाहिए। यदि पशु ज़्यादा गंभीर है तो उसको तुरंत पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों से संपर्क कर उसका उपचार शीघ्र प्रारंभ करना चाहिए। इस बीमारी में पशु खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, मुंह में छाले हो जाते हैं और पैरों में भी छाले हो जाते हैं, तो चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाता है। वह अन्य पशुओं से बिल्कुल अलग खड़ा रहेगा, अलग चलेगा। जब आप चराने ले जाएंगे तो सभी पशु साथ चलेंगे, लेकिन जो रोग ग्रसित पशु है वह सबसे अलग चलेगा, पीछे चलेगा, धीरे चलेगा। और इसकी पहचान करते ही सबसे पहले इसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अन्य एक बीमारी जो बहुत बहुतायत में आपके यहाँ पाई जाती है वह है निमोनिया। यदि किसी पशु को हम बाहर चराने ले गए और वह गीला हो गया, बारिश वर्षा में भीग गया, तो उसको निश्चित रूप से यदि उसका रोग क्षमता कम है तो उसको निमोनिया, जिसको हम बोलते हैं फेफड़ों लंग्स की बीमारी होती है, तो वह बीमारी से उससे बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। लेकिन हम लोग क्या है ध्यान नहीं देते और उसमें बुखार बहुत तेज़ी से आता है। ऐसे पशु की भी पहचान कर हमें उसे अलग कर देना चाहिए। इसकी पहचान इसको और एक अन्य बीमारी होती है जिसको कि हम बोलते हैं थनेला रोग। थनेला रोग जो होता है इस मौसम में इतनी तेज़ी से फैलता है जिसका उपचार बहुत आवश्यक है, क्योंकि थनेला रोग होने का मुख्य कारण है दुधारू पशु। जो दुधारू पशु होते हैं उनके थनों में चोट लगना, या दूध पीते समय छोटे बच्चे उनके थनों को घायल कर दें या काट लें, ठीक है, या फिर रोग संक्रमित जगह पर हम पशुओं को बांध देते हैं, ऐसी जगह पर पशु बहुत जल्दी संक्रमित हो जाता है।
1: ये कई बीमारियां बताई
0: जी।
1: आपने, एक तो आपने खुरपका मुंहपका बताया, गलघोंटू रोग बताया, थनेला रोग बताया, तो ये सभी बीमारियां बरसात के मौसम में होती हैं,
0: जी
1: या ये कहा जाए कि इनकी तीव्रता बढ़ जाती है और संभावना इनकी ज्यादा रहती है। इन सब बीमारियों से बचाव के लिए हमारे पशुपालक भाइयों को क्या करना चाहिए?
0: पशुपालक भाइयों, सबसे पहले तो जिन जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं उनका टीकाकरण आपको करवा लेना चाहिए। और इस टीकाकरण करवाने से ये होता है कि हमारे पशु में रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है वह उत्पन्न हो जाती है, और इस बीमारी से लड़ने की शक्ति जब पशु के शरीर में आ जाएगी तो वह इस रोग से ग्रसित नहीं होगा आसानी से। साथ ही यदि पशु ग्रसित भी हो गया है तो उसका उपचार भी संभव है। आप इसका उपचार निकट के पशु चिकित्सालय से अवश्य कराएं। साथ ही जिन पशुओं को आपने अभी तक साल भर में कृमिनाशक दवा यदि नहीं दी हो तो उन सभी पशुओं को एक एक फेनबेंडाजोल की गोली, जो कि ग्याविन पशु और जो ग्याविन नहीं है ऐसे पशुओं में भी ऐसे पशुओं को भी खिलाएं, जिससे कि उनकी जो पेट के कृमि हैं वो साफ हो जाएं। और उस यदि कृमि पेट में रहेगा तो वो अन्य बीमारियों को भी पैदा करने के लिए मौजूद रहेगा। इसलिए सबसे पहले हमें पेट की सफाई करना है, उसके बाद ही हम पशु को बचा सकते हैं।
1: अच्छा, जो पशु चरने जाते हैं चरागाह में, चरने वाले पशुओं के लिए क्या सावधानियां बरती जाए?
0: चरने वाले पशुओं में किसान भाइयों, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा दो तरह के परजीवी, एक तो आंतरिक और बाहरी परजीवी जो होते हैं, जो कि जैसे हमारे चींचड़ी है और जिनको हम मच्छर हैं विषाक्त, ये लग जाते हैं। बाहरी परजीवी जो रहते हैं ये उनको आसानी से काटने लगते हैं। साथ ही आंतरिक जैसे यदि हम बाहर चराने ले गए और हमने किसी नाले का

0: या पोखर का या नदी का पानी उनको पिला दिया। सामान्यतः होता यही है कि जगह जगह गड्ढे भरे हुए होते हैं और आप उनमें पानी पिला देते हैं, तो जो पानी हम पिलाते हैं उसमें छोटे परजीवी रहते हैं जो पानी के साथ पशु के शरीर में चले जाते हैं। ऐसे पशुओं में कृमि नाशक बहुत ज़रूरी है, उनको बोलते हैं हम आंतरिक परजीवी। बाहरी परजीवी जो होते हैं वह पशु की चमड़ी से लग जाते हैं, मतलब उसमें उसको अपना घर बना लेते हैं, उसके शरीर में, उसके बालों में, उसकी खाल से चिपके रहते हैं और पशु बेचैन हो जाता है। जब आप घर लाते हैं तो आप देखेंगे कि किलनी हैं, जू हैं, ऐसे ऐसी ऐसे छोटे परजीवी जो हैं वह बहुतायत से उसके शरीर में आपको मिलेंगे। इसका सबसे अच्छा निराकरण यह है कि आप आजकल एक साबुन आता है, उस साबुन से अगर आप उसको पशु को नहला देंगे तो ये परजीवी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। साथ ही उस साबुन को नहलाने में आपको भी कोई हानि नहीं है, ना ही पशु के शरीर पर भी कोई विपरीत असर नहीं डालता है।
1: अच्छा, एक अफरा बीमारी हो जाती है बरसात के मौसम में खास करके, क्या लक्षण है इसके और ये बीमारी क्यों होती है और इससे कैसे बचा जाए?
0: अफरा जैसे ही होती है, अफरा नामक बीमारी जैसी होती है, शुरुआत में क्या वर्षा ऋतु में हमारे यहाँ क्या होता है कि हरा चारा बहुतायत में मिलता है और जैसे ही हरा चारा पशु को मिलता है तो वह पशु उसको अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन कर लेता है और जैसे ही वह सेवन करता है तो पेट में जाने के बाद फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है और फर्मेंटेशन शुरू होता है तो फिर वह वहाँ गैस का उत्पादन शुरू हो जाता है, इस वजह से पशु का पेट फूल जाता है। यदि हमने नियमित समय में ध्यान नहीं दिया तो इससे भी पशु की मृत्यु हो सकती है। अफरा में एक विशेषता और है, यदि हमारे पशु को हम हरा चारा दे रहे हैं वर्षा ऋतु में तो प्योर हरा चारा ना देते हुए उसको सूखे भूस के साथ पशु को खिलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा ऋतु में हरे चारे के और भूसे के साथ देने से हम इस बीमारी पर 100% नियंत्रण कर सकते हैं।
1: तो ये बीमारी जो है ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खाने की वजह से होती है, तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि संतुलित मात्रा में ही, मतलब सूखा चारा और हरा चारा एक अनुपात में ही देना चाहिए तो इस बीमारी से बच सकते हैं। और कोई खास बात बताना चाहें?
0: सबसे खास बात यह किसान भाइयों की, जैसे ही ये हरा चारा खाते हैं कई बार होता ही है कि पशु उस हरे चारे के साथ कुछ जहरीले कीड़े भी का भी सेवन कर लेता है, तो हरा चारा जो हम बाहर चराने लेके जाते हैं ऐसे स्थान पर पहचान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पर ये कीड़े पहुँच जाते हैं। तो यदि पशु के पेट में कीड़े पहुँच गए तो उससे भी हमारे पशु की बीमारी निश्चित है और ये अफारा उसका भी एक कारण है। तो जैसे ही अफारा होता है तो आप सबसे पहले टिम्पोल एक नाम की दवा आती है या हींग जो हमारे घरों में रहती है उसका सेवन पशु को करा दें, जिससे कि वो गैस बनना उसके पेट में बंद हो जाए।
1: तो डॉक्टर चंदन सिंह बाथन, विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे पशुपालक भाइयों को बताया कि बरसात के दिनों में पशुओं को बीमारियों से कैसे बचाएं ताकि वे स्वस्थ रहें, अच्छा दूध दें और हमारी आमदनी बढ़े। आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार किसान भाई।
2: भैया अभी आपने सुनी जो भेंट वार्ता जी को विषय है, तो बरसात में पशुओं की बीमारियों को कैसे बचाएं, और जहाँ मैं जानकारी दे रहे थे डॉक्टर चंदन सिंह बाथम और उनसे बातचीत कर रहे थे SS चौधरी। तो भैया डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी बताई कि वाकई में हमारे सब अधिकतर हमारे किसान भैया पशुपालन करते ही हैं खेती के संगे संगे, और ज़रूरत है उन्हें जिस समय अपने पशुओं को ध्यान रखेगी तो जानकारी से उन्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। और भैया चर्चा तो अपन आगे और भी करेंगे पर हमें आपके मनोरंजन को भी पूरा ध्यान रहते हैं, तो आपके मनोरंजन के लाना एक लाए बढ़िया सा लोकगीत।
3: भैया देखो जय गाय रहे हैं राम सिंह राय, तो चलो पसंद लेते।
2: हाँ।

0: या देखो, जो थे 900 लोक गीत गा रहे थे राम सिंह राय, बिल्कुल सही कह रहे थे। सबसे उत्तम काम होते हैं भाई खेती किसानी को काम। और देखो, अपने देश की लगभग 70% जो आबादी रुपेश भैया, वो ग्रामीण
1: बिल्कुल
0: क्षेत्र में रहते हैं। जितने लोग कैसे न कैसे खेती पर ही निर्भर रहते हैं, यानी कि खेती किसानी की आजीविका को उनको साधन होते हैं।
1: सही बात करी मैंने आपको। और मैं जैसे अपन बात कर रहे हैं आज, तो फसल विविधीकरण की अपन बात कर रहे हैं, तो जहां मैं कहूँ तो मैंने कि खेत में अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जाते हैं। तो उदाहरण के लाने अपन देखें, जैसे किसान सोयाबीन की खेती कराते हैं, तो बाकी संग में अरहर उड़द या तिल जैसी फसलें भी शामिल कर सकते हैं। और जई प्रकार मक्का के संग में दलहनी फसलें या बाजरा ज्वार जैसे मोटे अनाज की भी फसलें ले सकते हैं। तो बहन जई कहेंगे हम कि फसल विविधीकरण को सबसे बड़ा लाभ यही है कि यदि एक फसल का उत्पादन कम हो जाए तो दूसरी फसल बाजार में बाकी भाव भी अच्छे मिलते हैं, दूसरी फसल से
0: मतलब
1: होगा।
0: एक फसल के संगे संगे मुलक सारे काम। और रुपेश भैया, जब एक बात और है फसल विविधीकरण को जे भी तात्पर्य है कि नई फसलों के संगे संगे अपन ने क्या करने हैं कि और भी जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं बिनके लाने भी अपन जामे शामिल कर सकते हैं, जैसे जो खेती से जुड़ी रहते हैं कि नहीं। जैसे अपन
1: हाँ
0: ने फसलें तो कर ही ली, नई फसलें होते हैं तो फसल की प्रणालियां हैं, कृषि उत्पादन कार्य, इन सबको
1: हाँ
0: जोड़ना।
1: मतलब आपको क्या मतलब जो है कि फसल विविधीकरण के संग अपन आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं,
0: बिल्कुल
1: प्रमाणित बीजों का उपयोग करें, मिट्टी परीक्षण कराएं, संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें, समय पर खरपतवार और कीट नियंत्रण करें।
0: संगे संगे और भी काम करें खेती से जुड़े हुए, जैसे डेयरी काम को करो, अब
1: हाँ
0: खेती से
1: बिल्कुल
0: जुड़ा
1: बिल्कुल
0: है, और पोल्ट्री है, सुअर पालन है, बकरी पालन है, जिस सब भी संगे संगे करते तो सहयोगी धंधा भी हो गए। और संगे संगे खेती से जुड़े भाई रहवे से जिनसे भैया को करवे कर वो भी मुलक आसानी को होता है। तो उम्मीद है भैया जाए जरूर करेंगे। और देखो चली चलवे की बेरा, चल चल
1: हाँ
0: जल्दी से मौसम बता दें तो न्यूनतम तापमान रहो 27 डिग्री सेल्सियस,
1: भाई
0: अधिकतम तापमान रहो 33 डिग्री सेल्सियस, हवा की गति रही 71 किलोमीटर प्रति घंटा, और भैया हवा में नमी यानी आर्द्रता रही 60%। और देखो जय के संगे ले लेते हैं कार्यक्रम से विदा, आप सबन के लाने चंदा बहन,
1: रूपेश भैया की राम
0: राम
1: राम,
0: राम,
1: जय
0: जय
1: जवान
0: जवान,
1: जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
4: अम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: नमस्कार अनुभा जी।
4: त्रिगुनायत जी, मैं आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड का 2 दिन का दौरा 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का उस देश का पहला आधिकारिक दौरा है। इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। आप इस दौरे के महत्व को कैसे देखते हैं?
5: अनुभा जी, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले कार्यकाल में 12 साल के जो हमने देखा है कि जो एक हाई लेवल एंगेजमेंट या विजिट डेफिसिट भारत से होता था देशों के साथ, वो कहीं के भी हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो दूसरे नेबरहुड में हो या लैटिन अमेरिका में रहे हो, ये सब चीजों को काफी अच्छी तरह से ब्रिज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी जाते हैं, राष्ट्रपति जी भी जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जाते हैं, मिनिस्टर्स भी जाते हैं जगह जगह। अब बहुत सी जगह हमने देखा है, खासतौर से आपने देखा होगा कि वेस्ट एशिया वगैरह में
4: जी,
5: जो हमारे सबसे बड़े नेबर है, वहां पे 3 दशकों तक कोई विजिट नहीं हुई। तो अब आज देखिए 40 साल के बाद प्रधानमंत्री का पहला दौरा हो रहा है यहाँ पर, तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक बड़ी बात है। कारण सीधा यह है कि हर एक देश इम्पोर्टेंट होता है और इंडो पैसिफिक के अंदर में जो उसमें भारत का एक बड़ा स्टेक्स भी है, वहां पर जो ये रिलेशनशिप है हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंडोनेशिया के साथ हो, चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ में हो। तो जैसा आपने देखा कि हमने अभी उनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश
4: की,
5: तो भारत है वो जो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं उनके साथ भी अपनी मित्रता काफी बढ़ा रहा है, उनको काफी असिस्टेंस दे रहा है, उसमें भी इन सब देशों का एक बड़ा रोल है क्योंकि वो वहीं पर है। और इंडियन ओशन में इनके साथ में हमारे कोलैबोरेशन जो बढ़ने से, चाहे वो मैरिटाइम में हो, ट्रेड में हो, इन्वेस्टमेंट्स में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में
4: जी,
5: हो, तो ये सारी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो हमने डिसाइड किया कि हमारा रिश्ता जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो जाए, ये एक इस बात को बताता है कि दोनों के लिए ही कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसा आप जानती हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बात किया तो उन्होंने कहा ये विनिंग पार्टनरशिप
4: जी,
5: तो दोनों के लिए विन-विन पार्टनरशिप है
4: जी। आपने अभी जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कही, तो एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें कि नई दिल्ली और वेलिंगटन ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया है, जिसमें अगले 4 वर्षों में संबंधों को बढ़ाने का रोड मैप शामिल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी आप बता रहे थे, अगर उस पे और आप थोड़ा सा जोड़ सके कि ये अपग्रेड जो हुआ है दोनों देशों के संबंधों के बीच में, ये इन संबंधों को नया रूप कैसे देगा?
5: देखिए, 2 तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो कि नॉर्मल चलते जाएं, जिसको आप कह सकते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है कि आपने हमें कुछ दिया, हमने आपको कुछ दिया, कभी कभार हम कोऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के साथ हमारा कोऑपरेशन नहीं रहा है या ट्रेड नहीं है, लेकिन जब हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उस चीज को तब्दील करते हैं तो उसमें और बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे डिफेंस है, सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट्स है, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हो, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के बारे में हो, तो ये सारी चीजें उसके अंदर में आ जाती है। इसलिए जो रोड मैप तैयार हुआ है, चाहे उसमें हमने ट्रेड को 2030 तक डबल करने की बात हो, या हमारा इन्वेस्टमेंट्स हो, या जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन हो, या किस तरह से हम मैरीटाइम एरिया के अंदर में और ज्यादा अपना कोलैबोरेशन को बढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं आज की डेट में, क्योंकि दुनिया का जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की एक अनसर्टेनिटी है, उस

0: में वैल्यू सप्लाई चेन्स के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक गुड्स एंड सर्विसेज में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके लगभग 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और दोनों देशों ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए थे। आइए पहले सुनते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
1: अम्बेसडर त्रिकुणायत, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने एफटीए पर जो बयान दिया, तो ये जो फैसले हुए हैं आज, जो एक ट्रेड को डबल करने का फैसला और जो हमने एक एफटीए साइन किया है, ये जो फैसले हैं, ये दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने में कितनी अहम भूमिका निभाएंगे।
0: अगर आप देखें तो मार्च में 2025 में आई थिंक उनके जो ये प्रधानमंत्री थे भारत आए थे, और जब वो भारत में आए थे उस वक्त ये डिस्कशन हुआ था कि भाई हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं आपके साथ। आप सोचिए कि तब से लेकर के अब तक एक रिकॉर्ड टाइम में ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है, उसका रेटिफिकेशन होने वाला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड में दोनों देश एक दूसरे को एक स्पेशल डिस्पेंसेशन देते हैं। तो ये खाली ट्रेड में नहीं है, ये सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि भारत की जो

0: वाला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि फ्री ट्रेड में दोनों देश एक दूसरे को एक स्पेशल डिस्पेंसेशन देते हैं। तो ये खाली ट्रेड में नहीं है, ये सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि भारत की जो सर्विसेज हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज हो या टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, उस सब में भारत का एक काफी नाम है दुनिया के अंदर। हमारे लोग जो है जगह जगह जाते हैं। इसी तरह मोबिलिटी एक एग्रीमेंट होता है उसका पार्ट, कि किस तरह से हमारे प्रोफेशनल्स ट्रेवल कर सकते हैं, और इसी तरह से उनका भी है कुछ हिस्सा भारत के अंदर किन चीजों में के बीच में। इससे आपको एक आशा बंधी है कि आपका जो ट्रेड है बायलैटरल ट्रेड, एटलीस्ट गुड्स सर्विसेज में, वो डबल हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन में इससे कई तरह का डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, और जो डिपेंडेंसीज ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़ी फ्रजाइल सप्लाई चेन्स हैं, उनको भी एड्रेस करने में मदद मिलेगी।
1: है, सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के मैं दृढ़ विश्वास, हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है, और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: त्रिकुणायन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मैरिटाइम और डिफेंस में जो हमारा कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात हो रही है, ये जो सहयोग है इसके लिए क्या नए मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, और ये जो बदलती इंडो पैसिफिक सुरक्षा स्थितियां हैं उसके बीच में इस सहयोग का क्या महत्व है?
0: आपको पता ही है कि दोनों ही मैरिटाइम पावर्स हैं, मैरिटाइम नेशंस हैं, और दोनों के सामने बड़े चैलेंज है, और चैलेंज आजकल दो तीन तरह का है। एक तो ये कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ देश फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को नहीं मानते हैं और उस बात को पूरी तरह नकारा करते हैं, लेकिन भारत इस बात को मानता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सिक्योर इंडो पैसिफिक जो है, वो ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट्स हो या आपका मैरिटाइम कनेक्टिविटी हो, उन सबके लिए बहुत आवश्यक है। और जिन देशों ने ये अनक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज को साइन किया हुआ है, उनको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भारत मानता है कि ये ग्लोबल कॉमन्स और ग्लोबल गुड्स के रूप में है। तो इसलिए यही न्यूजीलैंड का भी मानना है इस बारे में, एंड देयरफॉर हम लोगों का जो भी कई सारे एमओयू जो हमने साइन किए हैं इसके बीच में, डिफेंस के अंदर में हो, चाहे मैरिटाइम सिक्योरिटी में हो, हाइड्रोग्राफी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, मैरिटाइम हेरिटेज के बारे में है, तो ये सारे एमओयू जो है यही बताते हैं कि हमारा जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कोऑपरेशन है या इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है, वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और इसी तरह से ओशन जो है उनका पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह से जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हार्नेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ इसके अंदर में आती हैं, और उससे काफी बड़ा फायदा होता है दोनों देशों को।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज घोषणा की कि भारत और न्यूजीलैंड भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान भी एक ऐसा ही समझौता किया गया था। तो फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई दिल्ली और अन्य देशों के बीच ये इस तरह का जो सहयोग बढ़ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, दुनिया में हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जो युद्ध हुए हैं इतने सारे, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इसके समय पे हमने ये देखा है कि ज्यादा से ज्यादा जो देशों को एक ऐसा आपस में ट्रेड करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए कोई थर्ड कंट्री की करेंसी की आवश्यकता ना हो। और इसी तरह आजकल कोऑपरेशन फिनटेक एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ मीडियम बन गया है, और टेक्नोलॉजीज हैं जिसके जरिए दो देश काफी कुछ कर सकते हैं आपस में। और भारत ने जो अपना यूपीआई डेवलप किया है, यूनाइटेड पब्लिक इंटरफेस, उसको आप सोचिए कि कम से कम 25 देशों के साथ में हमने एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब है कि हम उस देश की करेंसी के साथ डायरेक्टली बिना किसी थर्ड कंट्री की करेंसी के जाए बिना व्यापार कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, टूरिज्म में लोगों को बड़ा फायदा होता है, बड़ा आसानी होती है आने जाने में, ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर रिमिट करने में एक क्लिक के ऊपर आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दुनिया ने देखा है, और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने भी भारत के यूपीआई को बहुत सराहा है
1: जी।
0: आपने देखा पीछे जब फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए थे तो जब उन्होंने चाय पी और क्यूआर कोड के जरिए वो दिया, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि किस तरह भारत का यूपीआई ज्यादा से ज्यादा देशों में एक्सेप्ट हो रहा है, और ये दोनों के ही भले की बात है।
1: आज न्यूजीलैंड में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि कैसे न्यूजीलैंड और भारत दोनों महिलाओं के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट

0: दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: अम्बेसडर त्रिगुणायत, बात चाहे महिलाओं के योगदान की हो या जिस देश का भी दौरा प्रधानमंत्री करते हैं, वहाँ भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं उनके योगदान की बात करते हैं वो हमेशा। तो जब प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं अपने दौरों के दौरान भारतीय मूल के लोगों की उस देश के विकास में, तो ये कितना बड़ा एक मोरल बूस्टर होता है और दो देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने में कितना महत्वपूर्ण है।
2: यहाँ तक हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो 10,000 करीब लोग वहाँ पर थे जिन्होंने उनको सुना, और आपने देखा कि वहाँ के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में गए, और यही दर्शाता है। और ऐसे ही हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, इंडोनेशिया में आपने देखा कि वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि डीएनए ही है हमारे अंदर, उनके राष्ट्रपति ने। तो जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं भारतीय मूल के लोग जो वहाँ पर हैं या एनआरआईज हैं, वो किस तरह वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल करके उनके देश के डेवलपमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो उसको वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। भारत ये अप्रिशिएट करता है कि हमारे भारतीय लोग या भारत मूल के लोग जो है वो एक लिविंग ब्रिज की तरह हैं दोनों देशों के बीच में। और रही बात जहां तक वुमेन लेड डेवलपमेंट की, तो आपको याद होगा जब हमने G20 समिट की थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री ये नहीं कहे वुमेन एम्पावरमेंट को छोड़ के, उसकी जगह एक नया एक मंत्र दिया था जिसको कहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, मींस हर क्षेत्र में स्त्रियों को और से और ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और उनको उस तरह का। तो ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है दोनों देशों के बीच में, उनको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे को बढ़िया बना सकते हैं, तो उसका मतलब मैं समझता हूँ इस बारे में था। और जहां तक हमारे जो डायस्पोरा है, मैं कहूंगा कि वो तो हर जगह कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी एक तारीफ होती है, और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन उस देश की बढ़त के लिए होता है उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं।
1: कृषि के क्षेत्र में दोनों देश हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी उद्योग में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं। इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड की जो एक्सपर्टीज है और भारत का एक जो बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार और एग्री टेक टैलेंट है, वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं।
2: देखिए, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, भले ही हम टेक्नोलॉजी में, आईटी में और सब चीजों में काफी प्रोग्रेस कर गए हैं, लेकिन आज तक हम यही कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है
1: जी।
2: ये तो बात सब जानते हैं इस बारे में। और भारत में भी बड़े रिवोल्यूशन हुए हैं, चाहे वो ग्रीन रिवोल्यूशन हो, चाहे वो येलो रिवोल्यूशन हो या व्हाइट रिवोल्यूशन हो। तो न्यूजीलैंड के बारे में अगर देखें, उनकी इकोनॉमी में भी डेयरी और एग्रीकल्चर का बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को, एग्रीटेक जिसको बोलते हैं, उसमें रिसर्च करी है। तो ये जो हमारा एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन है दोनों देशों के बीच में, ये हमारे बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक्सचेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस हैं, उस सब में और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक मैकेनिज्म बनाई गई है, और इसीलिए ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रोड मैप के अंदर में, उनको मॉनिटर करने के लिए एक फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे एक बड़ी कमेटी का गठन किया गया है दोनों देशों के, जो उसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे। कि भाई खाली बोलने के बाद ही नहीं है कि हम चले गए, विजिट खत्म हो गई, लेकिन यह है कि इसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई हर चीज के ऊपर में। और मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बनाना एक अच्छी बात है।
1: लोगों के स्तर पर, यानी कि पीपल टू पीपल लेवल पर सहयोग के वो कौन से क्षेत्र हैं जिन पर आज दोनों देशों ने एक सहमति बनाई है और वो कितने महत्वपूर्ण है?
2: देखिए, जहाँ तक पीपल टू पीपल है तो टूरिज्म एक बड़ी चीज है, तो उसमें अगर फैसिलिटेशन होता है हमारा वीजा के ऊपर में। दूसरा चीज ये है कि भारतीय लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सर्विसेज इंडस्ट्री में है, वो वहां पर जाते हैं। कल्चरल कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, एक दूसरे के जो कल्चर को जाने, वहां की माओरी जैसे है ट्रेडिंग, उनको बुलाया जाए, उनको यहां पर किया जाए, उस तरह बहुत सारे हर एक देश की अपनी अपनी प्रोजेक्शन होती है। तो भारत की जो है, जैसे अब योगा है वो वहां बड़ा पॉपुलर है, तो ये सब चीजें होने से जो है पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस तभी बढ़ेंगे जब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे कल्चर को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसमें भी जो हमारा जो डायस्पोरा है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
1: अम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा से प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुणायत। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: सुर्खियों में
5: कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं मजरू का लिखा और लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म कारवां से। इसे संगीत दिया है R.D.

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म घर से। गुलजार के लिखे बोल और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आनंद बख्शी का लिखा गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था अजनबी और इस गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म हमजोली से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है दो कलियां।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाज़ों में। साहिर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है ओ पी नैयर ने। फिल्म का नाम है नया दौर।

0: श्रोताओं, फिल्म नया दौर के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789851552371 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना

0: स्थापना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है माँ और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
2: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज

0: हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid.

0: का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दो दिन का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा था। जनाब मोदी के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को बड़ी तकवीयत मिली है। इस दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में 5 मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। इनमें दिफा, सियाहत, खेल, कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटना, डेयरी और मवेशी परवरी शामिल हैं। जना मोदी के इस दौरे की एक बड़ी खासियत ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में कम्युनिटी का प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए जना मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और दोतरफा तिजारत के समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक भरोसेमंद दोस्त करार दिया और न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के लोगों के रोल की सताइश की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब क्रिस्टोफर लक्सन की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि भारत न्यूजीलैंड ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हुआ है। किसी भारतीय वजीर आजम के गुज़श्ता दौरे के बाद से 40 साल के वक्फे का तस्करा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अगले दौरे में इतना वक्त नहीं लगेगा।
1: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
0: आज वियतनाम के फूक वोक जजीरे के नजदीक एक कश्ती के डूब जाने से 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई है। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने तस्दीक की है कि महलुकीन में 13 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने महलुकीन की वो फहरिस्त पोस्ट की है जो वियतनाम के अहलकारों ने फराहम की थी। सिफारतखाने के मुताबिक हलाक होने वालों में से 10 का ताल्लुक तमिलनाडु से, 3 का आंध्र प्रदेश से और 2 का केरलम से था। इस कश्ती में 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय सयाह, अमले के 3 अफराद और एक अटेंडेंट शामिल था। 17 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद समेत 21 अफराद को बचा लिया गया और अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। जिंदा बच जाने वालों में से 2 की हालत नाजुक है और इंतहाई तिब्बी निगहदाश्त में उनका इलाज चल रहा है। बचाव मिशन के दौरान वियतनाम के साहली गार्ड रीजन 4 कमांड ने अपने अहलकार तैनात किए और बचाव से मुतालिक सामान का इस्तेमाल किया। मुतासर कुनबों को मालूमात और मदद फराहम करने के लिए हो ची मिन शहर में भारतीय कौंसल जनरल में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इसके नंबर इस तरह से हैं, +84362107930, +84915527314 और +84334520414। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने कहा है कि हनोई में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है और उसका नंबर है +84913089165। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फूक वॉक जजीरे के नजदीक कश्ती के अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है, जिसमें भारतीय शहरी भी शामिल हैं। हादसे पर रंजोहम का इजहार करते हुए सदर

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवाः, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था।

0: आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, या कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है, उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो जगन्नाथ चढ़ी नंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पूरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हमें कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडी

अमावस्या का पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी, फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है फांसी। इसके बाद ढौरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढौरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है।

0: में रूप देता है। महाराणा भोई कमार रूपकार चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भौर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहिया में एक अक्ष संजोग किया जाता है प्रभु के आज्ञा मार आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारम्भ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संजोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन की दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदियां कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रह दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पक्षी पंचन होता है, आम केला कनस सपुरी कपटा, ये 5 प्रकार फल होता है, पक्षी होता है। मुख और नारियल का पूरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीय तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देवदलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धारी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और शिव मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्वानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा फोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहाँ 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला सिमंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। सिमंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कवि इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की, आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर, ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों से एक दूसरे को एक मिठास के रूप में ये परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियाँ उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कर दिया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने पीठा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संचेतन के संकरण से बना है पर कुछ किस्में जिसमें दशहरी और लाल सिंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखे थे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम से देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्र में चले जाए तो वहाँ बैगनापल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया। ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
5: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के

0: करने वाले हैं कुछ अचार की वैरायटियां विशेषकर, जो कि सभी जातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहां भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियां है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
1: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलियावा लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। कितनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटियां हैं जो आप एक दूसरे को मिलाती हैं, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
2: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी ये थे हमारा ध्रुव वही के जन्म है मोर उसी दिन हम अटारी में रहें फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमारा लालन पालन हुई हमारे माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लड़का ला छोड़ के चल दे भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ी तो ऐसे पड़ी कि वो एकदम लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रहे हूँ माँ गावे आरुद नदिया के बारूद कुदरिया जी बारूद कुदरिया पैरी

आया जनकारे राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो। बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सूर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के दनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जी ला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, आज कतेक सुंदर एकर आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ला पुकारत है। अब ये

लोग मन हा बिजलाल नाम रही से पर भगवान के नाम जपे ना तो जपरी कहा 11-13 के लगभग में रहे हूँ मैं तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगा हुए तो सुने पर आते कि ये वो छोटे से चटाई निकाली सब कथे में बैठ बेटा में बैठ कतका कन सुने ऐसे कि कही तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो तो नाना के आंखी में आंसू आ गए उसी समय वो बोली कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसे की आज भी गुंजा थे तेर के आधार पे ही मैं तेर लगा था जब पंडवानी जाता हूँ तो

तब से गंगा रूपी जो जनता जनार्दन के सम्मान हमल मिलते वो गदगद कर देते। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं के स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन लसनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उन मन रोना शुरू कर देते। हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते। हमला कई कौन सी मिट्टी बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग के सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है अब आगे बढ़ मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तब दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ कि वो की जो सिला गदा पकड़ के रेंगता हूँ, तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ ऐसे अनुभव लागते। चाहते हो तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐसी तेती बहका सकत रहे हूँ, उसमें अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खातिर हम ला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो आनंद आती मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते तो बोले भूर यारो बोले चुचकारो ये गाड़ रही ते गाड़ रही बेटा बहुत सुंदर गाले थे बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आती मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत अच्छा लगते लेकर मुला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खंभा भूर बिनत सौरी ला भेटे हूँ क्यों टल भेटे हूँ गंगा मां।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा, एक छोटी सी

0: पे विजया जी की अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
1: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यही संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामावरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामावरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामावरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामावरपु विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Imani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नु विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Reethi Gaula Ragam, Triputa Talam.

0: अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामावरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: यह था कन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलों ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्पु माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का समापन बिहार राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।

रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी यह सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।